आकाशवाणी दिल्ली का ये FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। वंदे मातरम।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 58 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हमारे साथ हमारी प्रातःकालीन सभा में। सुबह के 5:57 हुए हैं। लीजिए लेते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर दिन भर आपसे रूबरू होंगे 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो चैनल पर।

अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद ज्योति आनंद लेकर आएंगी कार्यक्रम सुप्रभात आप सभी के लिए। ठीक 7 बजे जुड़िएगा नूपुर कुलश्रेष्ठ के साथ और कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

नूपुर कुलश्रेष्ठ से ही आप ये कार्यक्रम सुनेंगे, जैसे मैंने बताया आकाशवाणी पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सूचना प्रद। इस कार्यक्रम के बाद एक बार फिर होंगी ज्योति आनंद हमारे साथ, आपके साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। इसके बाद फिर से नूपुर कुलश्रेष्ठ के साथ चलेंगे दिल के तराने गाने नए पुराने में, सुबह 9:02 पर। सुबह 10:00 निहारिका भुवानिया लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारी नियमित प्रस्तुति मैचलेस म्यूजिक आवर।

बबीता त्रिपाठी के साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स में सुबह 11:02 पर। दोपहर 12 बजे सुनिएगा वेस्टर्न म्यूजिक पर ही आधारित हमारी एक अन्य प्रस्तुति प्ले इट कूल निहारिका भुवानिया से। बबीता त्रिपाठी लेकर आएंगी रेनबो हेल्पलाइन, इसमें आज का टॉपिक रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उज्ज्वल चुक, जो कि स्पिरिचुअल रिसेप्टर हैं और उद्यमी भी हैं। इसके बाद सृजन राजपूत लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना दोपहर 2:02 पर।

ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आपसे लेकर आप दोपहर तक सुनेंगे हमारे इस चैनल पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के 6 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित होंगे। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड वियोस चैंपियनशिप मलेशिया के तीसरे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब हासिल किया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर 102.6 पर। सुबह के 6:02 और लगभग 32 सेकेंड हो गए। कुछ ही देर में होंगी ज्योति आनंद आपके साथ, सुप्रभात के साथ।

Hey listeners, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर. ये समय है कार्यक्रम सुप्रभात का, क्योंकि 6:10 हो चुके हैं और ज़िंदगी में अगर ताल से ताल परफेक्ट मिलती रहे तो ज़िंदगी का मज़ा दोगुना हो जाता है और ज़िंदगी में बहुत सारे प्लस माइनस भी लगे रहते हैं. तो बस आज के सुप्रभात में उसी के बारे में बात करेंगे. मैं हूँ आपके साथ ज्योति आनंद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो.

लिसनर्स, फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं आकाशवाणी रेनबो पर, और ज्योति आपके साथ है कार्यक्रम सुप्रभात के साथ. और ज़िंदगी आपकी भी है, ज़िंदगी हमारी भी है, इसलिए हम अक्सर ना ज़िंदगी की बात करते हैं. इनफैक्ट हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं या फिर प्लस और माइनस है, वो हमेशा लगे रहते हैं. और ज़िंदगी में, मतलब मैंने सुना है, मतलब मेरे साथ भी हुआ था, कि मैथ्स में हमें अक्सर डर लगता है ना. तो मैथ्स से मुझे याद आया कि जो ज़िंदगी में प्लस माइनस होता है ना, उसको कैसे मैनेज करना है. तो अगर मैं बहुत ही सीधे सीधे से शब्दों में कहूँ, तो हमारी सबकी लाइफ में, अगर लाइफ में इन दोनों का बैलेंस है ना, प्लस माइनस का, तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो सकती है. और चाहे कितने भी माइनस आए, चाहे कितने भी डाउनफॉल आए, हाँ, मगर हम उसको हम पार कर सकते हैं. तो अगर ज़िंदगी के प्लस के बारे में बात करूँ, तो वो हो सकते हैं हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारे सच्चे रिश्ते, प्यार हो, सम्मान हो, हमें नए नए सीखने के अवसर मिले, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सक्सेस, हमारे अच्छे दोस्त, हमारे मन की शांति सबसे ज़्यादा, और ग्रैटिट्यूड भी. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ के प्लस में हम गिन सकते हैं. और लाइफ के माइनस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि असफलता, दुख और दर्द, अकेलापन, तनाव, डर, गलतियाँ, आलोचना, मतलब किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो बस उसी टाइम हमारा मूड हो गया ऑफ, या हमें कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, या हम किसी बात से निराश हैं, या हम किसी से बिछड़ गए हैं, कोई हमारा बहुत ही अजीज़ हमसे दूर है. मगर लाइफ का सबसे बड़ा सच यही है कि जैसे मैथ्स में प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देते हैं ना, लेकिन ज़िंदगी में माइनस हमें प्लस की कीमत सिखाता है. तो इसलिए लाइफ में माइनस का होना ज़रूरी है, ताकि हमें प्लस की अहमियत पता लगती रहे. इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से,

क्या समझे, मुझे क्या समझाने की ज़रूरत है। हम सबको हमारी ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रही है। 28 जुलाई 2026 आज का दिन हो चुका है और 2026 मतलब ऑलमोस्ट हम हाफ से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं और ज़िंदगी जो है वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। मगर कभी कभी हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें सुलझने में थोड़ा समय लग जाता है। मगर अगर जब कोई कहानी सुन लेते हैं या कोई ऐसी बात सुन लेते हैं तो हमें अक्सर रोशनी दिखाई देती है और हमें अच्छा लगता है। तो धूप छांव हो गया, उतार चढ़ाव हो गया, सुख दुख हो गया, दिन रात हो गया, आंसू या फिर हंसी हो गए, या गम या खुशी हो गए, या प्लस या माइनस कहें, लाइफ में ये हमेशा चलता रहेगा और एक के बाद एक आते ही रहेंगे। बस हमें उसमें बैलेंस बनाना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी मगर बहुत गहरी है, सुनाती हूँ आपको। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी सफ़ेद रेखा खींची और उसके बीच में एक छोटा सा काला निशान बना दिया, बहुत छोटा सा। और उन्होंने सभी छात्रों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबने कहा काला निशान। तो जो शिक्षक थे वो मुस्कुराए और बोले, इतनी बड़ी सफ़ेद जगह किसी ने नहीं देखी, यही ज़िंदगी है। हम अपने छोटे छोटे माइनस पर इतना ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो भी बहुत सारी अनगिनत जो प्लस है ना, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आती हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी का हिसाब तभी सुंदर बनता है जब हम अपने प्लस के लिए हमेशा आभारी रहें और माइनस से सीख लेकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपको आगे आप ही बढ़ाएंगे।

जिंदगी को गले लगा लेते हैं और जैसी जिंदगी है उसे वैसा ही जी लेते हैं, क्योंकि जिंदगी तो हमारे कंट्रोल में है नहीं और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है नहीं उस पर हम क्या ही परेशान हो। 6:30 हो चुके हैं, कार्यक्रम सुप्रभात ज्योति के साथ आपके मैसेजेस भी हमारे साथ जुड़े हैं और आप अपने अपने जो एक्सपीरियंस हैं, तजुर्बे हैं, समझ हैं, सब हमारे साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो आपके लाइफ के क्या प्लस माइनस हैं, आप इससे क्या समझते हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें और कैसे बेहतर तरीके से बैलेंस बना सकते हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपसे जुड़ती हूँ थोड़ी सी देर में, यूँ ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

हम अपनी ज़िंदगी को जादू से भर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं, पॉजिटिविटी और प्लस से भर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे हमेशा कहती हूँ, पहले भी कहा है कि सिर्फ शब्द बदल जाते हैं और एक कहने का तरीका बदल जाता है, मगर जो उसका मर्म होता है ना, उस बात का, उस कहानी का, वो हमें देखना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने इस सब चीज़ों को नाम दिया है प्लस और माइनस लाइफ के। और हमारे एक लिसनर हैं जो लिखते हैं, पंकज लिखते हैं महाराष्ट्र से, कि जो स्टोरी छोटी सी सुनाई हमने शिक्षक वाली, वो उन्हें बहुत अच्छी लगी और छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिल गई। तो लाइफ में कितना कुछ होता है, मगर हमारा फोकस हमेशा कहाँ जाता है, सिर्फ एक नेगेटिविटी पे, एक गलती पे। ऐसा ही किस्सा है ना कि हम कितना भी अच्छा कर लें, मगर एक हमारी गलती सब अच्छे पर पानी फेर देती है। तो बस वैसा ही कुछ है, मगर जब हमें इस चीज़ की समझ आ जाए तो बस हमें अपनी ज़िंदगी में जादू फिर से भर लेना चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी जो है उसको हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, तो जो नेचर है ना, प्रकृति, वो भी इसमें बहुत अहम रोल जो है वो अदा करती है। और आपने कभी देखा है कि वो कभी भी जल्दी नहीं करती है, नेचर को किसी बात की जल्दी नहीं है, वो अपने समय से, अपनी चाल से चलती है, फिर भी उसके सारे काम समय पर पूरे होते हैं। तो बस हमें भी अपने जीवन में वैसा ही धैर्य रखना चाहिए, बस अपनी कोशिशें करते रहें और टाइम पर हमें विश्वास रखना होगा, क्योंकि इसके अलावा तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो ये नेचर है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे बड़ी टीचर है हमारी, तो ये गलत नहीं होगा। और ये हमें इतने गहरे सबक सिखाती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पेड़ हमें सिखाते हैं कि जितना ऊंचा आपको बनना है उतना आप बने।

मगर विनम्र रहें और वो फल आने पर झुक भी जाते हैं। नदी हमें क्या सिखाती है कि रुकना नहीं है, कैसी भी सिचुएशन हो चाहे आप स्लो स्पीड से आगे बढ़ें मगर आगे बढ़ते रहें। सूरज सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई शुरुआत होती है, जो कि सच बात है। और चांद सिखाता है कि जीवन में कमी और पूर्णता दोनों आती जाती रहती हैं, तो इसलिए एक आएगी तो दूसरी जाएगी और ये चलता रहेगा कार्यक्रम। हमें जो ऋतुएं हैं वो सिखाती हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। और पर्वत हमें सिखाते हैं कि चुनौतियों के बीच भी कैसे हम अडिग होकर खड़े रह सकते हैं, जो कि हमें रहना भी चाहिए। और फूल सिखाते हैं कि कम समय का जीवन भी खुशबू और सुंदरता बांट सकता है। बहुत गहरी बातें हैं ये अगर आप इस पे विचार करेंगे तो। और बीज हमें सिखाता है कि बड़े बड़े परिणाम पाने के लिए बहुत सारा धैर्य और समय हमें चाहिए होता है। तो देखा आपने हमारी नेचर, हमारी प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है और ये हमारी ज़िंदगी को ना सच में बहुत खुशनुमा बनाती है। अगर आपकी कभी किसी भी बात पे आपका माइंड परेशान है या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, नेचर में चले जाइए। आपको इतना सुकून मिलेगा, आपका दिमाग सोचने लग जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा। तो ये एक आजमाई हुई बात है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गाना, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत हल्की फुल्की है, उसे हम खुद ही भारी बना लेते हैं।

अच्छा लगा ना आपको ये गाना। अपने इसके लिरिक्स ध्यान से सुने तो ज़िंदगी हमारी कितनी खूबसूरत है, हल्की फुल्की है, और वो हमारे हाथ में है कि उसको हम कितना सीरियस या फिर कितना भारी बना लेते हैं। तो उसे हम हल्का फुल्का भी बना सकते हैं। आपके मैसेजेस हमारे साथ जुड़े हैं और हमें लिखते हैं कि अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, रहते हैं, और हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर बुरा समय चल रहा है तो वो भी कुछ दिन में चला जाएगा, और अच्छा समय भी जो है वो कुछ टाइम बाद नहीं रहेगा। तो जीवन में ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये हमेशा चलते रहेंगे। पंकज लिखते हैं हमें अमरावती महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं देवदत्त, जुड़े हैं गाज़ियाबाद से। उन्हें ये जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो उन्हें अच्छा लगा, और ये तो मैं कहती हूँ कि अक्सर थोड़े थोड़े दिनों के बाद हमें ऐसी बातें फिर से कर लेनी चाहिए। क्या पता कौन नया लिसनर हमें सुन रहा है या किसकी कौन सी बात हम तक पहुंच रही है। और हमें लिखती हैं डॉली, हमारे साथ जुड़ी हैं और लिखती हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आपका मैसेज मिल गया है और शो अच्छा लग रहा है, टॉपिक अच्छा लगा है। तो अपने ज़िंदगी से जुड़े कोई अगर आपके एक्सपीरियंस हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं, कार्यक्रम है सुप्रभा ज्योति के साथ। बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, और थोड़ी सी देर में आपको बताती हूँ कि आप आगे कौन कौन से कार्यक्रम सुन पाएंगे।

आप जहाँ भी हैं, जिस भी हिस्से से आप हमें सुन रहे हैं, बस यूं ही मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी रेनबो के साथ यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि पूरा दिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको उन्हें सुनकर बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो जैसे कि अभी मैं आपके साथ हूँ, मगर 7:02 से आपके साथ हूँ नूपुर लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और उसके बाद 8:02 से गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सेकेंड आवर आप सुनेंगे ज्योति के साथ, जो कि मैं ही हूँ। तो बस थोड़ी सी देर के लिए आपसे विदा लूँगी और फिर आपसे मिलूँगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसके बाद 10:02 से निहारिका आपके साथ होंगी लेकर मैचलेस म्यूजिक आवर। तो इस तरह से शोज चलते रहेंगे, आपको आगे की जानकारी हम देते रहेंगे, और आपके मैसेजेस जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें हमें एक मैसेज है डॉली का जो लिखती है कि मेरा माइनस पॉइंट है इमोशनल होना, प्लस पॉइंट है धैर्य रखना, और मुझे जल्दबाजी होती नहीं है और उस फैसले को लेने में जिस पर मेरा फ्यूचर डिपेंड हो। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी जिंदगी से जुड़ा कोई फैसला है या कोई भी फॉर दैट मैटर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसे हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। थोड़ा डिले हो जाए चलेगा, मगर गलत नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डिसीजन बाद में जाके उसका आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो भी हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि हम हम इंसान हैं और हमारे हाथ में चीज़ें एक्चुअल में नहीं हैं। तो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से अपना डिसीजन लें, मगर उसके आउटकम से इतना अटैच ना हो जाए कि आप या तो बहुत परेशान हो जाएँ या बहुत खुश हो जाएँ, क्योंकि चीज़ें जैसे हमें पता है ना बदलती रहती हैं। जैसे अभी मैं जाऊँगी और उसके बाद 7:02 से आपके साथ नूपुर होंगी, तो जैसे आना जाना लगता रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। और हमारे साथ जुड़े हैं देवदत्त, और थैंक यू लिखते हैं, और लिखते हैं कि आसमां में काले बादल हमेशा नहीं रहते हैं, कभी ना कभी तो काले बादल छट ही जाते हैं, उसी प्रकार इंसान की ज़िंदगी में दुख हमेशा नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है, और जैसे कि आज हमने इस बारे में बात भी करी कि किस तरह से नेचर यानी कि प्रकृति हमें इतना कुछ सिखा रही है, हमेशा हर पल हमें सिखा रही है कि देखो लाइफ कभी भी सर्टेन नहीं रहेगी, कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, प्लस माइनस चलता रहेगा। तो बस आपको बैलेंस रखना है अपने मूड का, अपने इमोशंस का और अपनी लाइफ का। पंकज हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू लिखते हैं, उन्हें ये शो अच्छा लगा, और जो उन्होंने बात की है

के पेड़, नदी, सूरज, चांद, परिवर्तन, पर्वत, फूल, बीज, इन सभी के माध्यम से जो बात हमने आज समझी, सीखी, वो उन्हें अच्छी लगी है। और इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना अपने आसपास, आपको हर चीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रही है। एक और मैसेज अंशी का जुड़ा है, मेरा मैसेज नहीं रीड कीजिए वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। सो दिस इज़ वन माइनस इन योर लाइफ, मतलब कि ये इमोशन जो है ना नाराज़ होने वाला, ये माइनस में आता है, तो वो तो हमें करना ही नहीं है। और अगर नाराज़ हो रहे हैं आप, तो उसको आप प्लस में बदल दीजिए, यानी कि नाराज़गी अपनी दूर कर दीजिए। और चलते चलते मैं आपको सुनाती हूँ एक और बहुत खूबसूरत सा गाना, क्योंकि मेरे जाने का वक्त तो हो चुका है। और फिर जुड़ती हूँ आपसे 8 बजे, आप सुनते रहें यूं ही आकाशवाणी FM रेनबो। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, इसलिए हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। कीप लिसनिंग आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्यवाही वापस लेने का फैसला किया है। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्यवाही का प्रस्ताव रखा गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भारत डाका के बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा, पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत, अन्य घायल। एक दिन के निर्धारित चुनाव अब 10 अगस्त तक तीन चरणों में आयोजित होंगे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयम्बतूर में हुआ। पहला मैच असम और मिजोरम के बीच खेला गया। ये थे इस घंटे के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हमारे स्टार्स और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें। बस यही दुआ रहती है, उसी दुआ के साथ मैं नुपुर श्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। और फिट एंड फाइन तो आपको रहना ही होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो, बदलता मौसम हो, और फिर ये जो रिमझिम रिमझिम झमाझम बारिश हो रही है। और आज का मौसम अगर आप बाहर थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा काले घने जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और पूरी पूरी आज ये बात है कि बारिश होगी, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। पूरी तरीके से आप सफ़र पर निकले हैं तो तैयारी के साथ निकलिएगा और बिल्कुल तैयार हो जाइए हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप 102.6 पर।

ये अभी शब्द कितना कितना खास है ना। अभी में जीना, अभी इस पल में जो करना है कर लीजिए। ये पल बीत जाएगा, फिर नहीं लौट कर आएगा। फिर भी ना जाने हम क्यों वर्तमान को भूल कर, है ना, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। जो बीत गया है उसके बारे में उनकी यादों में खोए रहते हैं, और जो नहीं आया है वहाँ कि जो चिंताएं हैं, सपने बुनना एक अलग बात है, लेकिन जो चिंताएं हैं बस उसमें ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए मत भूलिए कि जो अभी ये जो पल है, अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी जो मौसम का हाल है वो आज जो रहने वाला है वो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 28 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जो ये बातें हो रही हैं ये बहुत खास है। अभी इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान उसमें है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो बीत गया है और जो आने वाला है उसकी चिंता में हम अपने आज को खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और समय जो है उसको हम जाया कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मत भूलिए कि समय चुपचाप आपको देख रहा है, और जब आप समय को बर्बाद करते हैं ना तो फिर आप समझिए कि आपके साथ क्या होता है। बीता हुआ एक पल भी, संसार की कोई भी दौलत आपको वापस नहीं लौटा सकती। इसलिए एक एक पल बहुत कीमती है, और इस कीमती पल को अपने लिए और भी कीमती बनाएं। जीवन है, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर जीवन हम सबको मिला है, और इस जीवन को इतनी खूबसूरती के साथ जीना ज़रूरी है। और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं देखें ना, आपके आसपास सब कुछ कितना सुंदर है, और ये सुंदर जो नज़ारे हैं ये और भी सुंदर लगते हैं जब हम इनका ख्याल रखते हैं, है ना। और नहीं रखेंगे तो फिर ये अच्छे नहीं लगते। ये जंगल, ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे, ये झरने, और जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप रुख करते हैं पहाड़ों का, आपको लगता है कि बस ऐसी जगह हो जहाँ पे हरियाली ही हरियाली हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, और आप बस उनको देखें और जो विचार हैं बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो ये तभी हो पाएगा ना जब आप इनको सहेज के रखेंगे, इनको संभाल के रखेंगे, है ना। ये प्रकृति है, इसमें जीव जंतु हैं, इन सब का आप ध्यान रखेंगे। जंगल जो है, हमारे वन्य जीव है, उनका ध्यान रखें, और ये कितने खास हैं हमारे लिए उसका महत्व बताने के लिए आज हम मना रहे हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, जो कि हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। विलुप्त हो रहे जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और आप भी अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ख्याल रख सकते हैं कि हम जंगल जो हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको ना काटें। जो पानी उपलब्ध है ज़मीन में उसका उपयोग तभी करें जब आपको बहुत ज़रूरत हो, उपयोग नहीं है तो ना करें। प्लास्टिक के जो लिफाफे हैं उनका कम इस्तेमाल करें, या फिर जब आप घूमने जाते हैं तो आप कूड़ा करकट जो आते हैं वो ना करें। हर चीज़ को आप बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, साइकिल चलाएं। अगर आप रूम में नहीं हैं तो जो पंखा है, लाइट है, आप उसको ऑफ कर सकते हैं। छोटे छोटे से जो आपके प्रयास है ना वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और शुरुआत आप ही से होती है। आपको लगता है कि मैं ही क्यों करूं, क्या हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप वो हैं जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। निभा सकते हैं पेड़ लगाकर, अधिक से अधिक पौधे लगाकर आप वनों का दायरा बढ़ा सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, प्लास्टिक का त्याग कर सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं, और एक अच्छी जीवन शैली आप जी सकते हैं। ऊर्जा की बचत करना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना ये ज़रूरी है। तो ये सारी ज़रूरी बातें जो है ना वो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बस एक रिमाइंडर होता है कि हाँ, अगर हम उस ट्रैक से थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गए हैं तो ज़रा उस ट्रैक को हम समझें, और ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत है, ये जो रंग हैं, ये जो नज़ारे हैं, ये प्रकृति की गोद में जो आपको सुकून मिलता है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप इसे बचाएं।

इसका संरक्षण करें, ध्यान रखें, और इसके जो फल हमें मिलता है, जो आनंद हमें मिलता है, तभी मिलेगा जब हम भी कुछ देंगे। हमेशा हमें लगता है कि हमें मिले, हमें देना भी आना चाहिए, लेना तो हम सब जानते हैं, पर दीजिए ज़रा तो आपको अच्छा लगेगा।

जी हाँ, ये ऋतु भी, ये वक्त भी बहुत खूबसूरत है और हर दिन अपने आप में बहुत ही खास होता है। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई आज का दिन भी, ये तारीख भी अपने आप में बहुत कुछ खास लिए हुए है। और आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या हुआ ये बिल्कुल आपको बताते हैं। आप जुड़े रहिए बिल्कुल इसी सफर में हमारे साथ। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 1940 में, माफ़ कीजिए, 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1979 में चौधरी चरण सिंह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बने। 1995 में वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य बना। इसके साथ ही 1946 में आज ही के दिन सिस्टर अल्फोंसा का केरल में निधन हुआ था। अल्फोंसा को 2008 में संत की उपाधि प्रदान की गई थी। संत का दर्जा पाने वाली वे पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपके साथ साझा होगी इसी सफर में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: अब आप सुनेंगे कॉमनवेल्थ हाइलाइट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हाइलाइट्स।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स। नमस्कार। ग्लासगो की ठंडी फिजाओं में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ और बुलंद होता जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पांचवे दिन भारत के खाते में आए 6 पदक। ये पदक सिर्फ पदक नहीं बल्कि 4 साल की कड़ी मेहनत, पसीने और त्याग की कमाई है। हालांकि कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
2: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस देश को इन खेलों के पहले तक 46 स्वर्ण पदक सहित कुल 133 पदक दिलाए थे, और ये संख्या इन खेलों में भी बढ़ती ही जा रही है। और कल से ही आरंभ हो गई वो स्पर्धाएं जो किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी खेल उत्सव की सबसे रंगारंग, सबसे ग्लैमरस और सबसे रोमांचक स्पर्धाएं होती हैं। एथलेटिक्स खेलों की रानी कहते हैं इसे, और जिस तरह से भारत एथलेटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उम्मीदें भी जवान होती ही जा रही हैं। कल किन भारतीय पंखों को परवाज मिली, कौन बिजली की तरह कौंधे, कौन उम्मीदों के बोझ में दब गए, कहां मायूसी मिली और कहां अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संतोष भले ही पदक में न बदला हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पांचवें दिन का पूरा लेखा जोखा।
1: कॉमनवेल्थ खेलों का पांचवा दिन भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स के नाम रहा, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक दिलवाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया।
3: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
1: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
4: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव, जो उनके पापा जो हैं दीपक यादव जी एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है, हमारे आदरणीय सर थे, उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व किए, फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट, उसका पूरा श्रेय वहाँ के लोगों का और हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुँचाई है सर।
1: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का 6ठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 kg में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू

0: ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 केजी वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।
1: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष और 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्विन शंकर, मुरली श्री शंकर, सर्वेश कुसारे जैसे सितारों से सजा हुआ दल। कल पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके तकनीकी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के 3-3 एथलीट थे, आदर्श राम ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2.30 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन शंकर, मशहूर डेकाथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे, लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेश को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स, 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक हैं इस समय। अपने हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्री शंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की। अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात, और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे।
2: Hopefully I have to redeem my silver medals from last Commonwealth Games.
1: लॉन्ग जंप में ही भारत के एक और एथलीट थे लोकेश सत्यनाथन, वो बहुत रंग में नहीं दिखे। इस सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.77 मीटर ही कूद सके।
3: I finished fourth in my group and it was a big, two big jumps in the last and it was a scratch. But you know, bigger things is coming on Wednesday, so stay tuned.
1: 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड 1 के मुकाबले में हीट 1 में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
0: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें 2 स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हाँ, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए 5वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.2

0: 2.2 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
1: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, 2 बार के सिवाय, रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है। लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल 4 भार वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे और 3 भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीत कर पदक पक्का करने से बस 1 बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने 3rd राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
2: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। गोल्ड लिया ने
1: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैब्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण करते हुए 5-0 के 1 मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
3: यूनानिमस डिसीजन, द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया।
1: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
4: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत।
1: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ और सुमित ये मुकाबला अंकों के आधार पर हार बैठे।
0: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिम्नास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिला वर्ल्ड फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
1: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजनड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे 6ठे स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
0: आइए अब जानें पैरा स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने 5वां स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन 5वें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
5: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Game 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5 to 1.5. He trailed 6-8 in his first set and in second set he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
0: अब बात आती है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, ऋतु पूल बी के 3rd मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हार कर बाहर हो गई।
1: और आइए अब एक संक्षिप्त निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सिराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की, महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब

0: आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
1: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
2: The Commonwealth Games.

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और रबी है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आप हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत ही ख़ास बातें जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, साझा करते हैं। जो ज़रूरी है जानना आपके लिए कि क्या है आज का दिन, क्यों इतना ये ख़ास है और ख़ास एक और मायने में है। आज हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि वायरल हेपेटाइटिस लिवर की सूजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, इसकी रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं, क्या जांच हैं, उपचार को बढ़ावा दिया जाए। और ये जो दिन है ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बर्नबर्ग के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। तो इस खतरे से, इस बीमारी से आप दूर रहें, इसके प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और हेपेटाइटिस को, इसका जो उद्देश्य है कि पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, तो ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत सारी बातें होती हैं ख्याल रखने के लिए, साफ पानी पीना, खान पान का ध्यान रखना, संक्रमित सुइयों से बचना और समय पर टीका लगवाना भी इससे एक बड़ा बचाव है। तो सेहत के प्रति, अपनी सेहत के प्रति हमेशा जागरूक रहें, जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ख्याल रखें और एक स्वस्थ जीवन शैली को ज़रूर अपनाएं। किस वक्त जीवन में किस चीज़ की कमी है, क्या ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, उसके हिसाब से अपने रूटीन में बदलाव लाना ज़रूरी है। और बदलाव आता ही है, जीवन निरंतर बदलता रहता है और हम भी देखिए वक्त भी बदल रहा है। ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, तो हम भी बढ़ते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, आप जुड़े रहे हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर, और साथ ही साथ मैं हूँ आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ। और बात करें अगर फिल्मी दुनिया की, तो ये जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है, खूबसूरत है, और कई बार तो अलग भी नहीं है, क्योंकि जब आप पर्दे पर कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो लगता है जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं आप ही हैं, आप ही की लाइफ स्टोरी से आप बहुत आप उसको रिलेट कर पाते हैं। और फिल्मी दुनिया में अक्सर अभिनेता अपने किसी खास किरदार के लिए मशहूर हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने एक खास किस्म का किरदार लगातार करने के लिए वो मशहूर हो गए, और वो अभिनेता है, जी हाँ, बात कर रहे हैं जगदीश राज खुराना जी की, जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे, जिन्होंने कई फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। और अब तो आपको अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे, और उनकी जो तस्वीर है वो भी आपके चेहरे के सामने आ जाएगी। और पुलिस का किरदार, जो पुलिस इंस्पेक्टर का जो रोल ज़्यादातर फिल्मों में निभाया है, तो वो वही है। और उनके नाम सबसे ज़्यादा बार जैसे जो एक ही ये जो उन्होंने अलग अलग तरह के जो रोल्स निभाए, और सबसे ज़्यादा जो पुलिस इंस्पेक्टर वाला जो रोल निभाया है इतनी ज़्यादा बार, उसके लिए उनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उनके नाम पे। और 144 फिल्मों में, 144 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हुए वो नज़र आए। तो आज ही के दिन, जी हाँ, उनका आज हम बात कर रहे हैं उनकी, और आज उनकी पुण्यतिथि है और हम उनको याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज एक और अभिनेता, उनके बारे में भी बात करते हैं, एक्टर इंद्र कुमार, उनकी भी पुण्यतिथि है, और जिन्होंने वांटेड, तुमको ना भूल पाएंगे, कहीं प्यार ना हो जाए, और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी हिंदी फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाई, सहायक भूमिका के रोल में भी नज़र आए और मेन लीड में भी नज़र आए। और उन्हीं की मूवी का जुड़ा ये गाना जो है वो मैं आपको सुनवाती हूँ। आप जुड़ रही है हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। आप जुड़ रही हैं हमारे साथ क्योंकि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे सेगमेंट में आपके साथ जुड़ रही हैं ज्योति आनंद। दिल के तराने गाने नए पुराने में मैं आपके साथ जुड़ूंगी। एफएम रेनबो का ये सफ़र जारी है।

आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से मुलाकात की। भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना की। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी और विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार लोगों को रिहा करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक मंगल मिलन आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। पहली बार तृणमूल के अलग हुए गुट के सांसद भी आमंत्रित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अंत में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयम्बतूर में हुआ। पहला मैच असम और मिजोरम के बीच खेला जाएगा। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रम के लिए।

डेली लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आपका फिर से स्वागत करती हूँ गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में. मैं ज्योति आपके साथ. 8 बजकर नॉमिनेट हो चुके हैं और आकाशवाणी रेनबो के इतने सारे रंग हैं. देखो रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं और हमारे इस चैनल में भी बहुत सारे रंग हैं जो हर घंटे बदलते रहते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन. और हर एक नया रंग लेकर आता है बहुत सारे खूबसूरत से गाने भी, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ओवरडोज ना हो जाए, बोर ना हो जाए, तो इसलिए खूबसूरत से गाने भी. तो बस गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर का सफर शुरू हो चुका है. और आप बता सकते हैं आपका फेवरेट रंग वैसे कौन सा है? वैसे मुझे पता है सारे रंग आपके फेवरेट हैं और सारे शोज भी आपके फेवरेट हैं. तो बस सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, एंजॉय कीजिए एक और बहुत खूबसूरत सा गाना अभी.

ये जो लाइफ है ना, ये हमारा कभी भी इम्तिहान ले लेती है। मतलब हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। मौसम का हाल तो यही कह रहा है, कल शाम से और रात को काफ़ी बारिश हुई है, मौसम अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तब प्यारा सा मौसम मगर इस प्यारे मौसम के साथ साथ अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि हम आज जानते हैं कि आज 28 जुलाई है और आज दिल्ली में मुख्य रूप से गरज के साथ आंधी पानी और हल्की बारिश होने की संभावना है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी। मगर अभी फ़िलहाल अगर दिल्ली NCR की हम बात करें, और अगर मैं अभी खिड़की से बाहर देखूँ तो काले बादल हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अभी वो बरसे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता लग रहा, मगर हाँ बरसेंगे ज़रूर क्योंकि मौसम विभाग ने भी ऐसा कह दिया है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 34 डिग्री तक मिनिमम और मैक्सिमम जा सकता है 38 डिग्री तक। और नमी तो है ही हवा में, और इस मौसम में जब मॉइस्चर होता है तो अपना खास ख्याल रखना ज़रूरी है अपने पूरे शरीर का और अपनी खास कर आँखों का, क्योंकि इस मौसम में आँखों की परेशानी बहुत जल्दी आपको पकड़ लेती है। और AQI जो है वो भी अच्छा नहीं है, मतलब इतना अच्छा दर्ज नहीं किया गया है। और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की जो जारी की है सूचना, और आपको बता दूं कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आप बस तैयार रहें, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि जैसे बारिश अगर कहीं कहीं किसी इलाके में ज़्यादा हो गई तो जल भराव हो सकता है, और निचले जो इलाके होते हैं वहाँ पर बाढ़ भी आ सकती है। और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जब हवाएँ चलती हैं तो कुछ भी चीज़ उड़कर आपको हर्ट कर सकती है, और बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो करके रखें। ये तो देश के अलग अलग हिस्सों की बात की मैंने, मगर दिल्ली NCR में आज का मौसम ऐसा ही रहेगा, खुशनुमा सा अच्छा सा प्यारा सा मौसम है। और आप और हम साथ हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, तो बस मौसम को भी इंजॉय कीजिए, आकाशवाणी रेनबो पर इंफॉर्मेशन और सॉन्ग्स को भी इंजॉय कीजिए।

ऑफ कोर्स, हम सब आसपास हैं, हम सब एक दूसरे के पास हैं. आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से हम सब कनेक्टेड हैं देश के अलग अलग हिस्सों में. इनफैक्ट दुनिया के किसी भी हिस्से से, किसी भी कोने से आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. और जब आपके मैसेजेस हर तरफ से आते हैं तो हमें इस बात की पूरी पुष्टि हो जाती है कि आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर. तो बस अब आपके लिए एक और बहुत काम की खबर है, वो ये है कि जो

हाइड्रोजन ट्रेन है उसका लक्ष्य अब दिल्ली होगा। जी हाँ, हरियाणा में जीत सोनीपत के बीच दौड़ रही भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का अगले डेस्टिनेशन अब दिल्ली होगा और जल्द ही इसका ट्रायल सोनीपत से दिल्ली में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के बीच शुरू हो जाएगा। और इतने सारे फायदे हैं हाइड्रोजन ट्रेन के। सबसे पहले तो इसमें जीरो पोल्यूशन होता है, ये ट्रेन किसी भी तरह का जहरीला धुआं या फिर कार्बन नहीं उत्सर्जित करती है और इसमें इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से सिर्फ पानी की भाप ही निकलती है और इसके लिए बिजली की तारों की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही शांत और आरामदायक इसमें सफ़र होता है। डीजल ट्रेन्स की तुलना में लगभग 15 डेसिबल कम शोर करती है और जिससे हमारा जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा ना स्मूथ बन जाता है और अच्छा एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके और ये डीजल पर भी इसकी निर्भरता जो है वो कम होती है। देश के नेट ज़ीरो कार्बन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों का जो है वो पूरी तरह से इसमें समर्थन होता है। तो हर तरह से ये अच्छी है और बहुत जल्द ये दिल्ली तक भी पहुंच जाएगी। सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं ज्योति के साथ और मेरे पास बहुत सारी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जिसे अगर आपको जानना है तो बस सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए खूबसूरत से गाने इस खूबसूरत से मौसम में, इस खूबसूरत से दिन में।

अब क्या करें, मैं बताती हूँ क्या करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है और उसके बाद आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो ITR 1 और ITR 2 फिल करते हैं, वो 31 जुलाई तक, वो लास्ट डेट है, फिल कर सकते हैं। आज हो गई है 28, तो बस 29, 30 और 31, 3 दिन आपके पास शेष हैं। और लास्ट मोमेंट पर फिर इंटरनेट भी नहीं चलता है, सर्वर भी डाउन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको याद दिला देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि ये एक काम है जो आपको करना है। और इतना प्यारा सा मौसम है, एक और बहुत खूबसूरत सा गाना आपको मैं सुनवा रही हूँ, और उसके बाद एक लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और फिर आपके साथ जुड़ूंगी और बहुत सारी अपडेट्स के साथ जो आपके लिए जाना जरूरी है। सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6, दिल से दिल तक, ज्योति आपके साथ है। और अब है ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मंगल भवन मंगल हारी
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

जितना प्यार अपने दिल को करते हैं उतना ही प्यार अपने लिवर को भी कीजिए। और अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर आपका इम्यून सिस्टम कुछ डिसऑर्डर्स हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इस बार की जो थीम है वो है लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी कि वो सभी बैरियर्स को हम हटा दें जो लोगों के बीच में और उनकी सर्विसेज के बीच में होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसको हमें जो है वो जितनी इसके बारे में हम जानकारी लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, उतना अच्छा होता है। तो जो ये फैटी लिवर है इसकी रोकथाम और उपचार के लिए एक खास आज एक वार्ता होने वाली है, एक पैनल वार्ता होगी एम्स न्यू दिल्ली में, और इसमें आप शिरकत कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। 28 जुलाई 2026 मंगलवार आज के दिन शाम 4 से लेकर 5 बजे तक JL सभागार एम्स नई दिल्ली में ये होगा। आप सब वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप में से जो भी वहाँ जाने के इच्छुक हैं और चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप वहां पर 3:45 तक जरूर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और प्रवेश जो है वो निःशुल्क है, और आपको वहां पर मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग मिलेगी, तो आपको पार्किंग की भी सुविधा वहां पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज्यादा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप एम्स के प्रोटोकॉल विभाग प्रभाग में कॉल कर सकते हैं नई दिल्ली में, वहां से ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। मगर अपने लिवर का ख्याल रखना आपकी ही जिम्मेदारी है, और इसके लिए कंज्यूम आपको जो अल्कोहल है वो नहीं करना है, और साथ ही साथ और भी कोई चीज़ है इसके बारे में जानकारी वो सब आपको वहाँ मिलेगी। तो ज़रूर जाइए, इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, फ्री एंट्री है और पार्किंग की भी समस्या नहीं है। 4 से 5 ज़रूर पहुँच जाइएगा एम्स न्यू दिल्ली।

भी खामोश ना रहें। और जैसे कि अभी हमने बात करी थी हेपेटाइटिस डे के बारे में और इस बार की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, तो उसका सिंपल मतलब यही है कि जो भी आपको टाइमली उसके लिए जो प्रिवेंशन करने हैं या टेस्टिंग करनी है या कोई भी ट्रीटमेंट और केयर की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल खामोश ना रहें, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज आप एम्स न्यू दिल्ली में जा सकते हैं, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। और इसका मकसद यही है कि आप हेल्दी रहें, आपका दिल, आपका लिवर और माइंड का हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है।

आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है। और एक और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो लॉ स्टूडेंट सुन के खुश हो जाएंगे। इंडियन आर्मी जैग प्रवेश योजना के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर चुका है और भर्ती में शामिल होने के लिए आपका लॉ में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा है या फिर आप LLM भी कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना की तरफ से जैग JAG एंट्री स्कीम कोर्स April 2027 जो है उसके लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि LLM ग्रेजुएट हैं, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और LLM भी कर रहे हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस 17 अगस्त 2026 3 बजे तक जारी रहेगा। ये टाइम नोट कर लीजिए, 17 अगस्त 2026 3 बजे तक ये जारी रहेगा। और हालांकि इसमें भी बहुत टाइम है मगर बिल्कुल पता नहीं लगता है कि कब कौन सी नई सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और हम ये भूल जाएं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और फिर से मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं इस डेट से पहले आपको फिर से याद दिला दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, स्पेशली अगर उन्होंने लॉ किया हुआ है। और ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको इसमें बता दी है और आप इसमें जाके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर से नहीं करना होगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सारे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और उसके बाद इसमें आपकी सारी जानकारी होगी, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, वो सभी डिटेल्स सही होने की पुष्टि करने के बाद ही आप सबमिट पर क्लिक करिएगा। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स एडिट करने के लिए हर बार एप्लीकेशन खोलते टाइम सबमिट पर क्लिक करते रहिएगा ताकि वो सेव होता रहे। और इसकी आखिरी डेट जैसे आपको मैंने बता दिया है तो आप उस डेट का ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 2026 3 बजे तक। सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो 852 बाय द स्टूडियो क्लॉक। अभी समय है मेरे पास और चलते चलते आपको बताऊंगी कि और कौन से कार्यक्रम आज आप दिन में सुन सकते हैं। तो फिलहाल एक और खूबसूरत सा गाना इंजॉय करते हैं आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आज बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए आएंगे और जैसे आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो आज का रेडियो डॉक्टर सुनना ना भूलिएगा। और अभी 9:02 से आपके साथ होंगी नुपुर लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने, और फिर 10:02 से आपके साथ जुड़ेंगी निहारिका लेकर वेस्टर्न म्यूजिक का शो पैचलेस म्यूजिक, और बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन सकते हैं 11:02 पर, और फिर से प्ले इट कूल लेकर आएंगी निहारिका 12:02 से। 1:02 से बबीता त्रिपाठी के साथ आप रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम सुन सकते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर उज्ज्वल चुग जो स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। उसके अलावा सृजन राजपूत के साथ आशियाना 2:02 से आप सुन पाएंगे। और रेडियो डॉक्टर में आज जैसे मैंने बताया कि स्पेशल ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एनरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली, और डॉक्टर संजीव सेगल वाइस चेयरमैन एंड हेड हेपेटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। तो आप ये शो ज़रूर सुनिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सेहत की बात हो रही है और बहुत ज़रूरी है। सृजन राजपूत के साथ अल्फाजन शो सुनेंगे 4:02 से, उसके बाद सुषमा आपके साथ जुड़ेंगे लेकर सिटी लाइट्स 5:02 से। तो बस यूं ही आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मिलती हूँ आपसे कल फिर से इन्हीं एयरवेव्स पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से मुलाकात की। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक कल पेश किया गया। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक मंगल मिलन आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। पहली बार तृणमूल के अलग हुए गुट के सांसद भी आमंत्रित हैं। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और हॉकी, इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ। पहला मैच असम और मिजोरम के बीच खेला गया। ये थे AIR FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने गाने नए सुन, गाने नए पुराने, और इन गाने नए पुरानों में आप गानों का आनंद लेंगे और बस इन गानों की मस्ती में, इनके लिरिक्स में आप खुद को खोने से बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां पर हम तीन गाने लेकर आते हैं जो कि पुराने हैं, और नए गानों का सिलसिला भी साथ में बना रहेगा। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए सफर में, जिसका नाम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। और जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ नुपुर, और साथ ही साथ एक घंटे के इस सफर में ये आप हमारे साथ बिल्कुल लगातार सुनते रहेंगे। मैंने कहा जी हाँ, दिल के तराने, गाने नए पुराने, और जुड़े रहिए हमारे साथ, आनंद लीजिए इसी सफर में।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सूचना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

जिंदगी एक सफर है सुहाना फ्रॉम द फिल्म अंदाज. नाउ देयर आर फोर वर्जन्स ऑफ द सॉन्ग. दिस वाज वन. द अदर टू वर्जन्स वर संग बाय आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी. एंड देयर वाज आल्सो अ वर्जन मेड इन मलेशियन एंड इंडोनेशियन. इट वाज एक्चुअली अ पैरोडी ऑफ द सॉन्ग, बट इट वाज क्वाइट पॉपुलर नॉनदलेस व्हेन इट वाज रिलीज्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ट्रैफिक डिलेज एनीवेयर, प्लीज डोंट हेजिटेट टू राइट टू अस ऑन 9868107070. एंड वी हैव रिसीव्ड योर मैसेजेस ऑफ gratitude on our studio WhatsApp number. So Roland, one of our regular listeners, says that I regularly go back to this quote by a Scottish scholar called John Stuart Blackie, which says, "Awake the power within thee slumbering. Trim the plot that's in thy keeping. Thou wilt bless the task when reaping sweet labor's price." Roland, I must say, that's quite vintage and also very true to its heart. You know, we always have the power to turn it around, and we always have the power to choose a positive thought over a negative one. So hence, wake the power within thee slumbering. Thank you so much for sharing that with us, Roland. And up next, we've got a short break coming up, but the music is going to continue real soon. So you stay tuned. You're with me, Niharika, on the Matchless Music Hour this Tuesday morning.

0: साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: memories this rainy morning. And what's making our world rangeen today is your lovely messages and, of course, the weather. So we'll get to the weather update in a little while from now. But first, we've got to read the lovely messages that are coming in. So Vani writes to us and says, "You played Living Doll by Cliff Richard, which made me and my sister sing together and play on the guitar, holding our niece's hands, tiny hands. And we had a lovely morning." Very glad to know that, Vani. Thank you so much for writing to us. And that, of course, brings a smile on our face always. So, you know, it's a little community and we've got to be together. That's what it is all about. Thank you so much for writing to us. And as promised, the weather update is coming your way now. So we've got a brief rain shower this morning and there is likely to be rain in the afternoon as well. An umbrella is very important, my friend, today. It can rain anytime. And the temperature is likely to be between 33 degrees and 27 degrees. Although it's a little humid, so you might have been feeling the humidity since morning, which is only a sign of the rain that is to follow in the day. So yes, keep that in mind, and a bottle of water, keeping in mind our conversation around sustainability and around protecting our environment. And in case there's any other initiative that you take in your daily life to keep your environment safe and protected, and to do your bit for Mother Earth, do write to us on 9868107070. We'll be waiting to hear from you on sustainability as also on gratitude, two very important conversations that we're having today on the Matchless Music Hour. And up next, a short break. We've got a few minutes remaining, so yes, we will squeeze in lots of melodies and lots of music in that as well. Stay tuned. You're with me, Niharika.
1: Mere pyare deshvasiyon, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम एक की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से मुलाकात की। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक कल पेश किया गया। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक

मंगल मिलन आज सुबह संसद भवन में हुई। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एजाइलम में बदलाव किया है जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने बधाई दी। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ। पहला मैच असम और मिजोरम के बीच खेला गया। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। Stay tuned for Bollywood Trails.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी पर इस वक्त खबर बॉलीवुड की, यस खबरें बॉलीवुड की पूरे एक घंटे। और जबरदस्त इन खबरों के बीच बहुत सारी और भी सरप्राइजेस आपके लिए एकदम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शो बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी आकाशवाणी रेनबो पर। और हाँ, आप सबके लिए सवाल भी तो है, उसके लिए बस जुड़े रहिए, ध्यान से सुनते रहिए मेरी बातों को। तो बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ढेर सारी बॉलीवुड की खबरें और ढेर सारा मनोरंजन।

कवि के कहने का तात्पर्य क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये जो घंटा है वो आपका एकदम इसी तरह से ता जो भी मतलब म्यूजिक हा वाला चल रहा है ना, ऐसे ही चलेगा। मतलब डांस होगा, मस्ती होगी और ढेर सारा मनोरंजन के साथ आपके लिए खबरें भी होंगी, वो भी मनोरंजक ही होंगी। क्यों? क्योंकि आपके अपने पसंदीदा बॉलीवुड से जुड़ी होंगी, बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें तो होंगी और साथ में एक सवाल भी होगा जिसका जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं। बॉलीवुड सरताज क्या करता है? हमसे बात करता है और सारी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती है आकाशवाणी रेनबो के थ्रू। तो आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, 11:30 बजे जो सवाल आएगा उसका जवाब दे देना है, बस इतनी सी बात, व्हाट्सएप मैसेज करके देना है। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं बने तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, आपका नाम बिल्कुल शामिल होगा, नाम और आपके शहर का नाम, तो सौदा बुरा नहीं है, एकदम खरा खरा सौदा है। और इस सौदे को इन्जॉय करने के लिए आपको आधे घंटे बहुत ध्यान से सुनने होंगे और बहुत ही आसान सा सवाल, और जवाब का जो रिजल्ट होगा वो तो कमाल ही होगा, है ना? तो बस जुड़े रहिए और बॉक्स ऑफिस का हाल के लिए लौट कर आइए। छोटा सा गाना है, एंजॉय करिए।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ यानी बीटी विद बीटी। और अभी बॉक्स ऑफिस का क्या है हाल उसको जान लेते हैं। वैसे धमाल मूवी के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो बॉक्स ऑफिस की क्या ही बात करेंगे। अभी धमाल मूवी क्या कमाल और बवाल मचा रही है ये जानना चाहेंगे तो हम भी बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धमाल मूवी कि ये फ्रेंचाइजी यानी धमाल 4 जो आ रही है ना, आई है, रिलीज हुई है, 17 दिन हो गए इस मूवी को। और इसने अब क्या किया है पता है? अब इसने कुछ नया ही कमाल कर दिया है, टोटल धमाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पता है। टोटल धमाल जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की थी अब तक धमाल की जितनी भी फ्रेंचाइजी मूवी आई हैं, और उनमें अब धमाल 4 नंबर 1 पर आ गई है। और अजय देवगन की मूवीज़ की बात करें तो उनकी जो टॉप 5 मूवीज़ जिन्होंने कमाल किया है ना, उसमें बस शामिल होने ही वाली है। रेड 2 को उसने अगर पछाड़ दिया थोड़े ही दिनों में तो बस टॉप 5 में ये मूवी शामिल हो जाएगी अजय देवगन की। और इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धमाल 4 छाई हुई है। 17वें दिन भी फिल्म ने शानदार ग्रोथ दिखाई, 6.72 करोड़ का इसने कलेक्शन किया। और उसके बाद कुल कलेक्शन भारतीय नेट कलेक्शन जो है वो है 157.13 करोड़ पहुंच गया है। और टोटल धमाल को इसने लाइफ टाइम जो कलेक्शन टोटल धमाल का था उसको पीछे छोड़ते हुए अब ये नंबर 1 पर हो गई है। और अजय देवगन की टॉप 5 मूवीज़ में बस आने को तैयार है। धमाल 2007 में आई, डबल धमाल 2011 में यानी 32, उसके बाद 45.05 करोड़ लगभग। उसके बाद टोटल धमाल आई 2019 में 154.30 करोड़ लगभग। और अब धमाल 4 157.13 करोड़। गजब गजब परफॉर्मेंस ऐसे कहना चाहिए है ना,

अब कुड़ी की नई मुंडे की बात करते हैं भाई, अब अजय देवगन की बात करते हैं। अजय देवगन ने अपने पिता और मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की जयंती पर आने वाली एक्शन फिल्म का ऐलान किया था और फिल्म का नाम चौहान उन्होंने ऐसा बताया। अब उसके बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्साइटमेंट का लेवल भी तो तभी बढ़ता है ना, और उस फिल्म के बारे में हमें अगर पता रहता है तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है, इसीलिए तो आप सुनते हैं बॉलीवुड रील्स। तो फिलहाल आपको बता दूं कि इसका टीज़र भी आ चुका है, उसके बाद अब जब एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ी तो अब एक और ख़बर आ गई है, और वो ख़बर क्या है कि इस नीरज यादव के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में, एक्शन फिल्म में, अजय देवगन क्या रोल निभाएंगे। नहीं, ये खबर बिल्कुल नहीं है, ये तो अभी सीक्रेट है, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। मेरी एक्साइटमेंट इसी बात को लेकर है कि आखिर इसमें है क्या चौहान मूवी में, और इसके बारे में, अजय देवगन के रोल के बारे में अभी बातें सीक्रेट रखी गई हैं, तो हम भी इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास बात ही नहीं बताने के लिए। और रही बात जो टाइटल है इसको लेकर अभी जो बात चल रही है वो अलग हंगामा मचा हुआ है, लेकिन उसी बीच एक और हंगामेदार खबर ये आई है कि इस एक्शन थ्रिलर मूवी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने के लिए विक्रांत मैसी को साइन किया गया है। यस, अजय देवगन की जो आने वाली मूवी है ना, विक्रांत मैसी उसमें एंट्री मार चुके हैं, और ये जो उनका जो कैरेक्टर है ना वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो एकदम अलग जो रोल होगा वो भी, और विक्रांत मैसी को भी शायद हम ऐसे रोल में पहली बार देखेंगे। सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवीज में तो हम उनको देख ही चुके हैं, लेकिन एक्शन थ्रिलर में नेगेटिव रोल, ग्रे किरदार निभाने वाले कैसे होंगे विक्रांत मैसी, पता नहीं। मंत्र ये कैसा, क्या बता, वो भी कुछ ऐसा ही मंत्र पढ़ दें कि हम उनके हो जाएं इस रोल के लिए भी।

नई नई फिल्मों में नई नई एंट्रियाँ होती हैं और हमारी एक्साइटमेंट उस फिल्म के लिए बढ़ती है और हम जानने के भी बड़ी एक्साइटमेंट हमारी रहती है कि आखिर इस मूवी में क्या कुछ होने वाला है, क्या नया होने वाला है। तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें थिएटर तक जाना भी है या नहीं जाना है। और अभी आपको जाना है या नहीं आप डिसाइड करिए, मैं तो बस बताती हूँ आपको। आप इसीलिए तो सुनते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। फिलहाल बीटी विद बीटी चल रहा है, बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं और सवाल का टाइम भी होने वाला है जिसका जवाब आप देंगे तो बॉलीवुड सरताज बन जाएंगे। अब ये मत कहिएगा बताया नहीं। कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्म है द प्राइड ऑफ भारत, आगे भी है। इस टाइटल को काफ़ी लंबा रखा गया है तो हम या तो आधा बोल देते हैं तो उससे काम चल जाएगा। अब थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसको याद करने के लिए, लेकिन इसमें एक एक्ट्रेस की एंट्री हुई है तो वो हमने सोचा आपको बता देते हैं। और रही बात फिल्म के टाइटल की तो है द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज। ये है लंबा सा टाइटल इस मूवी का और जैसा कि टाइटल बता रहा है कि ये इस कहानी क्या है, कुछ आपको आइडिया लग गया होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये कहानी है और वो प्राइड ऑफ भारत तो थे ही। अब इस बात को मिलाकर ये इतना लंबा नाम रखा गया है। और रही बात ऋषभ शेट्टी की तो इस फिल्म का ऐलान तो पहले कर दिया गया था और ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में है इसका भी ऐलान कर दिया गया था, पोस्टर भी आ गया है, लेकिन अब इसमें और क्या नया आया है ये जानना है तो वो हुई है एक हीरोइन की एंट्री जिसके बाद हमारे दिल की घंटी बज चुकी है। और आप अगर सोच रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा है तो नहीं, गाना भले ही उन पर ये फिल्म आया गया है लेकिन ये सुंदरी हैं भूमि पेडनेकर। यस, छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो ये फिल्म बन रही है उसमें भूमि पेडनेकर की एंट्री हुई है और इस ऐतिहासिक फिल्म में वो महान वीरांगना बेलवाड़ी मल्लम्मा का किरदार निभाने वाली हैं। इस एंट्री का हम इस तरह से घंटी बजाकर स्वागत करते हैं। आप सुनते रहिए बीटी विद बीटी।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और आकाशवाणी रेनबो पर समय है आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल पूछ ही डालने का, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सहताज। तो व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपने अपना मोबाइल हाथ में ले लिया है, नंबर एकदम पता है आपको, और नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ। दिमाग यहीं पर रखिए और हाँ, कीपैड पर थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, कई बार आप जल्दबाजी में गलत जवाब टाइप कर देते हैं। तो सवाल तो सुन ही लीजिए, इतना एहसान कर दीजिए, मुझे पता है आप आइडिया लगा ही लेते हैं थोड़ा बहुत कि सवाल क्या पूछने वाली हूँ। हाँ तो पूछ लेती हूँ, अजय देवगन की आने वाली मूवी की बात की थी और उसमें किस एक्टर की एंट्री की खबरें बताई हैं मैंने, तो बस आपका उनका नाम लिखना है आपको और अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले, और उसके बाद भेज देना है इस नंबर पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ।

लेकिन आपको बता दूं कि अजय देवगन की आने वाली जो मूवी है चौहान, उसकी बात कर रही हूँ। जो उनकी आने वाली मूवी चौहान की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें किसी एक्टर की एंट्री की खबरें हैं और उनका नाम आपको लिखकर भेजना है। सबसे पहले अपना नाम, शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है वो नाम जो है आज का आंसर, उसके बाद भेज देना है नंबर पर जो नाम नंबर है 9868107070, हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर है 9।

7070 और इस पर अगर आपने सही जवाब भेज दिया तो क्या पता बॉलीवुड सरताज बन जाए, और नहीं बने तो आपका मैसेज, आपका नाम, आपके शहर का नाम जरूर शामिल होगा, बशर्ते आपने उसी तरह से टाइप किया हो जैसे मैंने कहा था। सुनते रहिए बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ यानी बीटी विद बीटी। और अब अगर आपको नई फिल्म का इंतजार है तो थोड़ा सा इंतजार बढ़ा देते हैं। किस फिल्म का इंतजार बढ़ाना है भाई, चलिए बढ़ा देते हैं। आने वाली मूवी पंकज त्रिपाठी की एक थी जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे कि भाई अब पंकज त्रिपाठी को देखने को मिलेगा, अब इंतजार खत्म हुआ। लेकिन क्या करें, अब ये इंतजार थोड़ा सा बढ़ गया है। और किसकी बात कर रही हूँ, फिल्म कौन सी आने वाली थी? ओ माय डॉग, यस, ओ माय डॉग, ना कि ओ माय गॉड। ये मूवी है और आने वाली थी 31 जुलाई को, लेकिन अब रिलीज से कुछ दिन पहले ही ऐसा डिसाइड किया टीम ने कि इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। अब क्यों किया अंदर की बात है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन पोस्टपोन हो गई है ये खबर बाहर आ चुकी है। और ऐसे में इंतज़ार थोड़ा सा बढ़ गया है, ज़्यादा नहीं, 7 अगस्त को ये मूवी रिलीज़ होगी, तो लगभग एक हफ्ते का इंतज़ार हम कर सकते हैं। लेकिन मूवी में क्या कुछ होने वाला है ख़ास, ये जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मूवी का टाइटल है और बताया भी क्या है, उसके हिसाब से ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओ माय डॉग।

देखिए ढोल नगाड़े सब बजते रहेंगे क्योंकि शो चल रहा है बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और आज जन्मदिन है आयशा जिरका का, याद है कितना जबरदस्त प्यारा सा प्यारी सी मुस्कान और क्यूट सा फेस लेकर जब भी आती थी तो छा ही जाती थी। छोटी सी हाइट लेकिन क्या जबरदस्त कमाल की एक्टिंग और कमाल की सफलता उनको मिली छोटे से करियर में भी। कुर्बान जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, दलाल, बलमा और मेहरबान जैसी मूवीज आईं तो लगा कि वक्त हमारा है, ऐसा कह रही है आयशा जिरका। 1993 में ये मूवी भी आई थी और 90s के दौर में इनका एक मासूम सा जो चेहरा है वो छाया ही रहता था। फिल्म मासूम के लिए भी ये जानी जाती हैं जो 1996 में आई थी और फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्होंने जीता बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए। बहुत सारी फिल्में इन्होंने की लेकिन हाँ छोटे से दौर के लिए ही रहीं और उसके बाद गायब हो गईं। बलमा मूवी में एक गाना था ना, अगर जिंदगी हो, बहुत ही प्यारा लगता था उस वक्त पर। और आज के दौर में थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ 90s का है तो मे बी जेंसीज को उतना खास ना लगे, लेकिन हम इसको बड़ा गुनगुनाते थे। और आज पता है जन्मदिन धनुष का भी है, साउथ की मूवीज़ में वो बहुत एक्टिव हैं लेकिन इंडियन मूवीज़ जो भारतीय यानी हिंदी भाषा में जो मूवीज़ आई हैं बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उसमें बहुत कम, रांझा जैसी मूवीज़ में दिखे, लेकिन जो कमाल का उन्होंने प्रदर्शन दिखाया Why this cola very cola very cola very deep, शायद यही बोलते हैं। और उस गाने से तो क्या ज़बरदस्त छा गए, उनका नाम सब ने जानना शुरू कर दिया और बॉलीवुड में रांझना मूवी से एक अलग ही पहचान उन्होंने बना ली और इन गानों से भी। तो इन दोनों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और आयशा जिरका का ये गाना तो सुन ही लेते हैं थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रूर।

आप सबसे पूछा था कि अजय देवगन की आने वाली मूवी चौहान में फिलहाल किसकी एंट्री की खबर मैंने बताई थी, किस एक्टर की एंट्री हुई है, और यही आज का सवाल जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है 9868107070 पर। ऑलरेडी आपने आंसर दे दिए हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि आप सबके मैसेजेस शामिल कर लूँ, नहीं तो फिर बॉलीवुड सरताज से बातें भी तो करनी है, टाइम बचाना है, थोड़ा सा भागा जा रहा है। इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं आप सब तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक मैसेज तो ये भी आया कि मैंने बहुत अच्छा गाया, बस मुझे लगा कि इस गाने को पूरा ही सुनाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम है कि कह रहा है कि मैसेजेस शामिल करने हैं, एक मुखड़ा और सुनाऊंगी सिर्फ इस

वैसे बता दूं ये अंतरा था, मुखड़ा नहीं था, और मुखड़ा मैंने गाया था थोड़ा सा। और आपको बता दूं, इससे ज्यादा मैं गाऊंगी तो आप, मैं पकड़ी जाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी सिंगर हूं, इसलिए रहने ही देते हैं। इम्तियाज अली और कीर्ति, इम्तियाज अली ने ये बात कही थी। और अब सबके मैसेजेस शामिल करती हूँ जिन्होंने आंसर दिया है, और देखते हैं बॉलीवुड सरताज कौन बनता है। लेकिन आंसर जिसके आए हैं उनके नाम ले लेते हैं, और ज्यादातर या कह दें कि लगभग सही ही जवाब दिख रहे हैं मुझे अभी तक। तो शुरू करते हैं। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं, विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं, और बदायूं उत्तर प्रदेश से विनीत कुमार लिख रहे हैं, और सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं, शिव मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से लिख रहे हैं, निकिता पुणे से लिख रही हैं, पंकज महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, सुखलाल बाला कहाँ से लिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, अंकुश चौहान ये मोहाली से लिख रहे हैं, और सुधा का भी मैसेज दिख रहा है कहाँ से ये नहीं दिख रहा है, अनुज दिल्ली से लिख रहे हैं, और अनूप साहू का भी मैसेज दिख रहा है, लेकिन ये लंबा सा मैसेज पढ़

के लिए, मतलब जो एड्रेस है वो इतना लंबा है कि मुझे खोलना ही पड़ेगा मैसेज, और ये है कासगंज से, और ये यूपी में आता है। फरीदाबाद से मैसेज आ रहा है रामलाल का भी, रामलाल राज का, और प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। पूजा कोमल का भी मैसेज दिख रहा है, और ये दिल्ली से ही है। संजय खत्री महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, अजय कुमार छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं, ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, और मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से लिख रही हैं, नीतीश कुमार झारखंड से लिख रहे हैं, और सही जवाब के साथ ये किसका मैसेज है, जगतर सिंह यादव का, और ये मैसेज आया भटिंडा से, उमेश कयाला से, तौसीफ अहमद श्रीनगर से, मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से, और नेक्स्ट मैसेज है मोहम्मद इम्तियाज का कीर्ति नगर दिल्ली से, कांठ से मोहम्मद फुरकान लिख रहे हैं, और ये एक और मेरी तारीफ में गाना अकोला से, मैं कहीं पूरा नहीं ना गा दूं, अगर आपने ऐसे इतनी तारीफ कर दी ना तो उसके बाद फिर आप मत कहिएगा कि मुझे रेडियो बंद करना है। टोनी शाह का मैसेज आ रहा है कहाँ से, भटिंडा से, उसके बाद सुदर्शन मुखी अनीता मुखी का भी मैसेज दिख रहा है, और मैसेजेस और भी दिख रहे हैं, लेकिन क्या करें, उन्होंने अपना नाम सबसे पहले नहीं लिखा होगा तो शायद शामिल नहीं हुआ, अदरवाइज मैं ज़रूर शामिल करती हूँ, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, बहुत अच्छी हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। अब बॉलीवुड सरताज को ढूंढ कर लाने की बारी, आप गाना एंजॉय कीजिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए।

0: आकाशवाणी रेनबो और ये हूँ मैं पविता त्रिपाठी और एक बार फिर से हमारे साथ होंगे बॉलीवुड सरताज। एक बार फिर से नहीं, वो हर बार अलग अलग बनते हैं और बॉलीवुड सरताज बनने का टाइम, बनाने का टाइम आ गया है और बॉलीवुड सरताज हमारे साथ हैं। वो स्वयं अपना नाम बताने के लिए तैयार हैं तो हम क्यों बताएं, उनसे ही पूछते हैं। हेलो, ये क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज़ है?
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: नीतीश कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार नीतीश, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हेलो
0: नीतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: थैंक यू मैम।
0: नीतीश, मैंने पूछा था कि आने वाली फिल्म अजय देवगन की है चौहान, उस मूवी में किसी एक्टर की एंट्री हुई है और उस एक्टर का नाम पूछा था। विक्रांत मैसी, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ बनते हैं आप बॉलीवुड सरताज, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू मैम।
0: नीतीश, आप क्या करते हैं बता दीजिए जल्दी से अपने बारे में, और कुछ कहना चाहते हैं तो भी, क्योंकि जो फोन लाइन है ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाएगी मुझे लगता है। अच्छा, सिल्क की साड़ी का बिजनेस करते हैं और दिल्ली हाट वगैरह, यानी दिल्ली में आप आते रहते हैं, दिल्ली आना जाना आपका लगा ही रहता है काम के सिलसिले में।
1: जनपद आते हैं, प्रगति में आए हुए हैं।
0: हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप दिल्ली से, तो दिल्ली तो हम सब के दिल में बसती है और आपको आने का भी मौका मिलता है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आकाशवाणी रेनबो सुनने के लिए कितना समय निकालते हैं?
1: मैं अभी तो काम ही कर रहे हैं ना, लगा के छोड़ देते हैं, बैठे हुए काम कर रहे हैं उससे गाड़ी वगैरह का।
0: अच्छा, तो लगा के छोड़ देते हैं, सुनते रहते हैं। और भी कोई चैनल्स नहीं सुनते क्या आप, यही सुनते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए और इसी तरह से दिल तक कनेक्टेड रहिए, ठीक है?
1: थैंक यू मैम।
0: ओके, मैसेजेस भी करते रहिएगा। आपका नाम वैसे हम पहले भी पढ़ते रहे हैं।
1: मैं एक बार आपसे बोलना चाहते हैं, अगर मेरा जो पढ़ते हैं ना, मेरा गांव का नाम रेशम नगर भगैया, तो पूरा बोला कीजिए, खाली झारखंड से बताते हैं हमको तो।
0: अच्छा, पूरा एड्रेस अगर सबका बोलेंगे नीतीश, तो होगा क्या कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और ऐसे में सबके नाम शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए, आपसे डिटेल में तब बात करेंगे जब आपकी यहाँ से जो आवाज है वो ना क्लियर आएगी, तो आपकी कंप्लेन भी सुनी जाएगी। फिलहाल तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रॉपर, लेकिन हाँ, थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो से इस तरह से दिल तक जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी बबिता त्रिपाठी को जाना होगा, क्योंकि आपको सुनना होगा अगला शो। लेकिन आपको बता दूं, निहारिका आ गई है प्ले इट कूल लेकर, तो उनके साथ रहिएगा। उसके बाद लौट कर आऊंगी मैं रेनबो हेल्पलाइन लेकर। मेरे साथ होंगे एक मेहमान जो डॉक्टर उज्जवल चुग, जो कि स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और आज इमोशनल इंटेलिजेंस पर बातचीत होगी। तो अगर आपके सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड हैं तो उनको एकदम तैयार रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होगा और इमोशनल हेल्थ हम सब के लिए इस समय बहुत ज़रूरी है और हमेशा ही बहुत ज़रूरी रही है, तो हमें ध्यान देना चाहिए इस पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल लगाइएगा, अपनी जो भी क्वेरी है उसका समाधान पाइएगा हमारे एक्सपर्ट से, और सुनते रहिए इसी तरह से दिल तक। फिलहाल बबिता त्रिपाठी कहती है टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में आज नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार और असम सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का निर्णय किया। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आज संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से मुलाकात की। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 महीने के एक शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम

बिरला ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से हरित, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली एसाइलम में बदलाव किया है, जिसके तहत आव्रजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आव्रजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शर्मिला को बधाई दी। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: ये है आकाशवाणी रेनबो और ये शो है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी। एंजॉय द शो। और हाँ, ये जो हल्की हल्की बारिश है ना, इसको एंजॉय करते रहिए। दिल्ली एनसीआर में तो जबरदस्त हो रही है, बाकी जगहों का हाल भी आप बताइए। लेकिन हाँ, आज के शो में जरूर खो जाइए और अपनी बातें भी दर्ज कराइए। बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं रेनबो हेल्पलाइन। इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

ये आकाशवाणी रेनबो और शो है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट भी। तो टॉपिक क्या है वो जानना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये मुझे समझ में नहीं आया, और अगर आपको भी नहीं समझ में आया ना तो आप भी बस जुड़े रहिए और क्या पता आपकी क्वेरीज भी निकल आए। तो आप भी फोन मिलाइए और या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपने सवाल पूछ डालिए हमारे एक्सपर्ट से, जो कि है डॉक्टर उज्जवल चुग, स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर एंड ऑथर, लेखक हैं, आध्यात्मिक उपदेशक हैं। इनसे बात करेंगे और क्या क्या बात करेंगे वो सब आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर आपके सवाल ऑलरेडी तैयार हैं तो भी, और नहीं है तो भी, नंबर नोट डाउन कर लीजिए और आपके काम जरूर आने वाला है। 2342-1080 जिस पर आपको

0: कॉल करना है, या दूसरा नंबर है 2342-1084। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए इस नंबर पर 9868107070, 9868107070। तो डॉक्टर उज्जवल चुग का स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले आकाशवाणी रेनबो पर। तो डॉक्टर उज्जवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे आकाशवाणी के लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत दिल से नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू सो मच।
0: आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। हमें इमोशंस के बारे में पता है, इंटेलिजेंस के बारे में पता है, लेकिन आपने तो ये दोनों मिला दिया।
1: देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर इसको समझे तो जैसे क्या होता है ना, एक मैथ्स का सवाल जब देते हैं,
0: हाँ,
1: और एक बच्चा अगर झट से मैथ्स का सवाल सॉल्व कर देता है, हम कहते हैं अरे वाह क्या IQ है इस बच्चे का, दैट इज कॉल्ड एज एन इमोशनल, दैट इज कॉल्ड एज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब इसी तरीके जैसे आपका एक मैथ्स का सवाल जो लॉजिक पे बेस्ड है या कोई भी लॉजिकल चीज है, वो आपके दिमाग में कितनी तेज को सॉल्व करने की क्षमता है उसको बताती है, विच इज उसका मापदंड है IQ। सिमिलरली जो हमारे अंदर इमोशंस आती है, वो इमोशन कुछ भी हो सकती है, वो अच्छी हो सकती है, बहुत खुशी हो सकती है, मैं परेशान हो सकता हूँ, मेरे से कोई चीज में फेल हो गया या मेरा कोई लॉस हो गया, उन इमोशंस को मैं किस तरीके हैंडल करता हूं कितने इंटेलिजेंटली, तो दो तरीके हैं। एक है कि इमोशन के साथ मैं बह जाता हूं, जैसे किसी के साथ मान लीजिए कुछ दिक्कत हो गई और वो आदमी बिल्कुल ही सेटबैक में चला गया, यानी कि वो इमोशन को मैनेज नहीं कर पाया। एक आदमी के साथ दिक्कत हुई, खराब सबको लगता है, हम इंसान है तो खराब लगेगा, मगर इमोशन के साथ बहा नहीं, तो हम कहेंगे कि इसका इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर है। सो एज सिंपल एज दैट, हाउ यू इंटेलिजेंटली मैनेज योर इमोशन, वही EQ है, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन भी कह लीजिए या उसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह लीजिए।
0: तो कब हम समझ पाए कि हमारा इंटेलिजेंस कितना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, कैसे समझे, क्योंकि इमोशंस के साथ तो हम कई बार बह जाते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि मतलब ये नॉर्मल है, और कई लोग अगर नहीं बहेंगे इमोशंस के साथ तो फिर हमें लगता है कि यार इसके तो दिल ही नहीं है, मतलब ये कैसा इंसान है।
1: देखिए, मैं आपको पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने के तरीके से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस या जिसको हम EQ बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन, उसका इतना बड़ा रोल है। IQ चाहे आदमी का कम हो, बट जिंदगी में अगर आप जिंदगी के सफर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, तो इमोशनल इंटेलिजेंट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इसको देखा जाए, वो बड़ा सरल है। तो अगर आप अपने आप को खुद एज एन ऑब्जर्वर, दृष्टा बन के जब देखते हैं,
0: अच्छा,
1: और आपको लगता है कि जी जब मेरे अलग अलग पल आते हैं इमोशन, जैसे उदाहरण अगर आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स के बहुत सारे कारण होते हैं, बट आप देखते हो टू ऑफन मूड स्विंग होता है और एक मूड स्विंग आपको बहुत लंबा ड्रैग करा के चलाता है, तो दैट मींस आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है, यानी कि आपको इमोशन को मैनेज करना नहीं आता। आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से आपको उभरने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम या अच्छा या बुरा ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, बट हमारे को हम उसको ड्रैग करते रहते हैं उस बैगेज को, और हमें बहुत समय लग जाता है उस चीज को अगर उस इमोशन से उभरने में, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। जैसे कुछ कुछ लोग होंगे, देखिए कुछ अच्छा होगा तो वो अच्छे में ऐसा होगा कि जैसे वो आदमी उसमें इतना बह जाएगा कि सब कुछ भूल जाएगा, वो पार्टी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या करी जा रहा है, और फिर अचानक से उसको समझ आएगा कि अरे यार ये मेरे साथ बाद में कुछ हल्का सा गलत हुआ, तो वो एकदम से सेटबैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो एनी एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन, जहां पर मैं सरल भाषा में बोलूं, हम इमोशन को देख करके दृष्टा से समझ नहीं पा रहे, इमोशंस हमें चला रही है, तो दैट मींस इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा कम है।
0: ओके, मतलब हमें कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, अपने गवर्नेंस में रखना है, मतलब इमोशंस हमें नहीं चलाने चाहिए।
1: करेक्ट, कंट्रोल करना सही वर्ड नहीं है, बट आपने जो आखिरी में बोला बहुत सही बोला कि यस, कि इमोशंस हमें ना चलाएं, और हम इमोशंस को देख करके समझ करके उस फीलिंग को तो महसूस कर रहे हैं, बट हम डिरेल नहीं हो रहे, उसी का इमोशनल इंटेलिजेंस मापदंड है।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया, लेकिन बाकी की चीजें भी और समझेंगे, और आप सबके जो सवाल है उनका भी इंतजार है। फटाफट अपने सवाल भी भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप मैसेज करके भेजेंगे 9868107070 पर, या चाहिए तो आप एक काम करिए, सीधे डायरेक्ट कॉल लगाइए और हमारे एक्सपर्ट से बात कर लीजिए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात कर सकते हैं। क्या आप भी इमोशनली ड्रैग हो जाते हैं खुशी में या गम में, या कई बार आपको लगता है कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था, इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था जो हमने नहीं किया। तो चलिए, आप अपनी बातें खुद रखिए।

हमारे एक्सपर्ट के सामने, और इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। तब तक एक गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उज्ज्वल चुग, जो कि स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर हैं और ऑथर भी हैं। तो फटाफट लौट कर आइए अपने सवालों के साथ। मैं भी आती हूँ इस गाने के बाद।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर उज्जवल चुग, जो कि आज बात कर रहे हैं किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर और ऑथर हैं डॉक्टर उज्जवल और आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सब अपने सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक सवाल अपना नहीं पूछा है और नंबर जानना चाहते हैं उनको बता दूं, कॉल करने के लिए 2342-1080 या 2342-1084 जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली NCR के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना इन नंबर से पहले मत भूलिएगा। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो नंबर है 9868107070 9868107070। और सवाल तो आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर उज्जवल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर आपने बताया कि क्या मापदंड है और किस तरह से ज़रूरी है, तो साइंटिफिक मापदंड भी है क्या, कुछ उस पर बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए जब हम हर चीज़ हमारे सिस्टम के रिलेटेड ह्यूमन बॉडी की वो साइंटिफिकली हर चीज़ को रेगुलेट किया जा सकता है और उसका मापदंड भी है। तो जब आप इमोशनली देखेंगे या एक आदमी का ओवरऑल कि वो कैसा उसका टेम्परामेंट है, वो एक बहुत सिंपल सी पर्टिकुलरली चीज से मापदंड किया जाता है। तो जब हम किसी का भी ECG करते हैं तो हमारी कुछ ब्रेन वेव्स होती हैं, चार टाइप की ब्रेन वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। सो ये हर टाइप की वेव जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जिस लेवल पे होंगे उसी पर्टिकुलर टाइप की वेव और ब्रेन फ्रिक्वेंसी में आपकी ये वेव्स ऑपरेट करेंगी। अच्छा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो बहुत ही, जो आप ले लीजिए आजकल की चीजों में बहुत ज्यादा जिसको एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करता रहता है छोटी छोटी चीजों में, तो आप देखेंगे जनरली उसका जो वेव पैटर्न है वो अल्फा बीटा में स्विच करता रहेगा। अच्छा। बीटा वेव्स अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स अल्फा वेव्स। और कोई आदमी जो बहुत कामली चीजों को एड्रेस करता है, कामली चलता है और चीजों में उसकी लाइफस्टाइल के अंदर उसने ऐसी चीजों को धारण कर रखा है जिससे वो इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर पाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसका जो ब्रेन वेव पैटर्न बहुत बारी अल्फा और थीटा के बीच में चलेगा। तो बिल्कुल मापदंड है इन चीजों का और इसको बिल्कुल हम देखा जा सका है प्रत्यक्ष तरीके से कि एक आदमी की इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रही है।
0: अगर इमोशनली फिट है या फिट नहीं है ये जानना है कोई भी इंसान, जैसे मुझे अपना इंटेलिजेंस जानना है कि मैं इमोशनली फिट हूँ या नहीं हूँ, तो आपने बताया कि किस तरह से जान सकते हैं, क्योंकि इमोशनली ड्रैग नहीं होना किसी भी सिचुएशन में, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इमोशनली फिट नहीं है तो हमारी आम जिंदगी में अगर हम देखें तो कई बार इसका, अगर इमोशनली फिट नहीं है तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं जो हमें कई बार नहीं पता होती हैं। आप बताइए।
1: बहुत सारी नहीं, पूरी जिंदगी ही आपकी इस इमोशनल इंटेलिजेंस पे चलती है। तो जैसे कहते हैं ना एक सीढ़ी होती है, सक्सेस सीढ़ी, तो सक्सेस सीढ़ी के अंदर जैसे IQ को हम बहुत वेटेज देते हैं, IQ का अपना एक इंपॉर्टेंस है, बट सही मायने में अगर आप देखेंगे EQ इज मच मोर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर कोई आदमी कहता है मुझे एक अच्छी ब्लिसफुल लाइफ चाहिए तो फिर उसको EQ इमोशनल क्वेश्चन से SQ पे मूव करना पड़ता है, विच इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। बट अभी हम EQ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपने आप को। तो अगर आप बात करें, कोई आप लाइफ उठा लीजिए, आप अपना करियर उठा लीजिए, आप एक प्रोफेशन में, हाउ यू बिहेव इन योर वर्क कल्चर, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, आप लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं, वो डिटरमाइन करता है कि कितने लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई चीज आपने किसी के साथ व्यवहारिक बहुत अच्छी करी थी अपने बॉसेस के साथ एंड दे रियली अप्रिशिएटेड, उनको अपील

0: गई, ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट है इन टर्म ऑफ ग्रोथ प्रमोशन वो भी मिलता है, आपका कर्म तो है ही है। आप रिलेशनशिप में बात कर लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप एक पार्टनर की है, हस्बैंड वाइफ की है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे वो एक दोस्त है, चाहे कोई भी है, उस रिलेशनशिप के अंदर आप अल्टीमेटली इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस इमोशंस पे सब कुछ निर्धारित है कि आप लोगों का सफर कितना सुंदर होगा,
1: अच्छा।
0: कितना अच्छा होगा, कितनी मिठास होगी। वो बात अलग है कि हर चीज में ये उतार और चढ़ाव जो है ना जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, वो ECG लाइन होती है ना, देखिए आपने सीधी लाइन का मतलब होता है डेड व्यक्ति, बट वो ऊपर नीचे चलती है साइन वेव ग्राफ की तरह।
1: ओके, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर थोड़ा सा इमोशनली हम कभी कभार ड्रैग हो भी जाए,
0: वो तो होना बड़ा मतलब एक कह लीजिए तो बट नेचुरल है। हाँ। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं।
1: हाँ।
0: हम कहें कि ऐसा ना हो तो वो तो हो नहीं सकता।
1: ओके, मैनेज कर पाते हैं, मतलब ये बड़ी बात है, मैनेज कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अभी एक सवाल जो है ना, जो दर्शकों के आ रहे हैं, जो लिसनर्स के आ रहे हैं, उनको लेना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। सरबजोत सेठी लिख रहे हैं कि चाइल्डहुड फ्रेंडशिप ट्रूली लास्ट इफ ओनली 1% डेवलप्स इमोशनल मेच्योरिटी व्हाइल द अदर रिमेंस इमोशनली अनअवेलेबल और अनचेंज्ड। ये क्वेश्चन है,
0: देखिए कभी कभी क्या होता है इसमें ना, बड़े सारे पहलू हैं इनके जो लिसनर का सवाल है, तो हम बहुत सारे पहलू आते हैं, बट आपके जो सवाल से मैं समझ पा रहा हूं तो उसमें दो तीन पक्ष को मैं करूंगा। कभी कभी क्या होता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका भी हर व्यक्ति का बहुत अलग होता है। किसी आदमी का इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत लाउड होता है, किसी का तरीका बहुत सटल होता है। जो एक व्यक्ति है जिसको हर चीज थोड़ी सी प्रोएक्टिवली चाहिए कि अरे यार मुझे एक्सप्रेस करो, और दूसरा व्यक्ति नहीं करता, तो दूसरे व्यक्ति को यह लग सकता है कि यार ये सामने वाला मेरे पास इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आजकल आपको एक बहुत कॉमन इशू बताता हूं हस्बैंड वाइफ में करेंटली। लॉट ऑफ टाइम यू विल फाइंड वाइफ इज समबडी हु नीड्स कि भाई मेरे को एक्सप्रेस करो कि चलो यार कहीं घूमने चलें, चलो यार ऐसा करें। बहुत बार आप देखेंगे, जो आपको बहुत सारे हस्बैंड्स मिलेंगे, दे विल बी दोस पीपल हु आर केयरिंग, बट उनका केयर को दिखाने का जो तरीका है दैट इज नॉट दैट वे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम पहली बात इस चीज को जरूर देखें कि सामने वाला व्यक्ति, और वो कैसे चेक करें, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट से चेक करें कि कोई व्यक्ति आपके लिए कितना आपके साथ खड़ा होता है, कितना आपके लिए अदरवाइज अवेलेबल है, वो उस आदमी का मापदंड बताता है, ना कि उसने सरफेस लेवल पे कितना एक्सप्रेस करा या नहीं करा। नंबर एक बात। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं हर इंडिविजुअल व्यक्ति के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, अगर आप इमोशनली मैच्योर्ड हैं और आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और मान लीजिए मैं किसी के लिए एक अच्छी इमोशंस डेवलप कर लेता हूं, वो मेरा मित्र भी हो सकता है, वो मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर मैं उसके लिए इमोशन डेवलप कर लेता हूं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इमोशनली मैच्योर्ड हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, बट आपको ये बात इतनी ज्यादा बॉदर नहीं करेगी कि सामने वाला व्यक्ति तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो आपका खुद का टेक है कि आप किसी को क्या दिल से मानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है
1: जी।
0: आपकी आस्था होती है, मंदिर जाते हो मूर्ति में, और जो ये हमारे लिसनर है, क्योंकि मैं उनके नाम से पकड़ पा रहा हूं, तो वो शायद एक सिख है, तो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी में आस्था रखते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो वो बोल नहीं सकती है, मगर आपकी आस्था तो कम नहीं होती ना। तो सिमिलरली अगर आपने किसी के लिए एक प्योर इमोशन रखी है, तो ब्रह्मांड का रूल है वो किसी ना किसी तरीके से पे बैक होगी। इफ यू आर इमोशनली मेच्योर, तो आप इस चीज को देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे, और आप लो फील नहीं करोगे।
1: वैसे तो आपने जो पति पत्नी वाली बात छेड़ी दी है, तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आ गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है कि पहले लिसनर्स के जो सवाल हैं उनको लेते हैं। तो एक कॉल आई है, बात करते हैं उनसे। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैडम मैं उत्तरनगर से बोल रहा हूँ, मनोज
1: जी। मनोज बताइए, सवाल बताइए।
2: मैडम मेरी वाइफ है, उनका इबाद से इलाज चल रहा है, पर मगर वो इतना बोलती है वो कुछ नहीं होती।
1: अच्छा,
2: ये लगा लो वहाँ से हटना पड़ता है।
1: ओके, तो उनका ऑलरेडी इलाज चल रहा है
2: इबाद से।
1: ओके, तो फिर बताइए सर, इसमें क्या कर सकते हैं?
0: तो मनोज जी, आप समस्या क्या है कि वो बोलते हैं, ये समस्या है, समस्या बताएं क्या है?
2: हाँ सर, ये बहुत बोलती है, जब
1: मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी वाइब्स हैं।
0: हाँ,
1: जो
0: देखिए, मैं ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, इस कॉमन सवाल के लिए मैं कहूंगा कि ना बहुत ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड जो है वो जो हमारे मस्कुलिन है, मेल है, उनको भी बात समझनी पड़ेगी। ये दोनों पक्ष को अपनी अपनी एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है, जो नारी तत्व है उसको बाय नेचर, बाय यूनिवर्स कुछ चीजों के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे आदतें होती हैं, देखिए अभी आपने कहा जैसे एक फीमेल्स के अंदर ये बाय नेचर होता है कि मान लीजिए वो कोई चीज को लेके ज्यादा बॉदर होती हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली भी है कि जो इमोशनल

0: खराब होगा ना, और वो बहुत दुखी होंगे। अगले दिन वो जब सुबह उठेंगे ना, तो उनकी आधी चीज चली जाएगी, वो कहेंगे यार रात गई बात गई। उसका कारण है क्योंकि एक मेल की जो इमोशनल रिसाइकल है वो 24 घंटे में रीसेट होती है, वेयर एज फॉर अ फीमेल इट टेक्स क्लोज टू 28 डेज। तो उसको
1: माय
0: तब
1: गॉड.
0: तक वो इमोशन उसको पकड़ के रखती है। तो इस केस में एज अ मेल हम सब लोगों का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दायित्व बनता है कि कभी कभी क्या होता है कि फीमेल्स अगर बोलती भी हैं तो आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, इन द सेंस कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप टाइम टू टाइम ना समझाते रहो, बिल्कुल समझाइए, जो उनकी हेल्थ के लिए उनके इमोशंस के लिए मनोज जी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसको सोच सोच करके ये सोचने लग जाओगे कि ये खराब है या ये बेकार है, तो ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नारी तत्व के अंदर आपको समझना पड़ेगा उनका बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी ऐसा है जहां पर अगर वो इतनी केयर करती हैं। देखो नारी के अंदर ही ममता बताई गई है, उसका तो कोई मैच नहीं है ना, तो वो ममता कहाँ से इतनी आई, क्योंकि उनका फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम इतना गहरा है। तो उस केस में एक बैलेंस्ड अप्रोच, और वो बैलेंस्ड अप्रोच क्या है, फ्रॉम अ मेल साइड, आप जहां जहां उचित समझें राइट टाइम पे समझाएं भी, मगर आप ओवर थिंकिंग में इस बात को लेके परेशान ना हो कि यार मेरी वाइफ इतना बोलती है इतना बोलती है इतना बोलती है, नहीं तो आप भी दुखी हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसको ये लगेगा मैं किसको सुनाऊं, और पता लगेगा वो और ज्यादा इमोशनल डिप्रेशन में चलेगी, बिकॉज शी विल फील एज इफ कि मेरे पास तो कोई सुनने वाला ही नहीं।
1: पैंथर तोमर लिख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है और अंदर ही अंदर मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा है, तो एक लीडर के रूप में हम उसकी इस स्थिति को कैसे पहचान सकते हैं, साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने और उसकी मदद करने के लिए क्या उपाय हैं?
0: लिसनर का क्या नाम है इनका?
1: पैंथर तोमर, किशनगंज दिल्ली से।
0: तोमर जी आपका बहुत सुंदर सवाल है। देखिए आज की डेट में जहाँ पर इतना ज़्यादा हम ऐसे इकोनॉमिक एरा के अंदर हैं और एआई ड्रिवन वर्ल्ड में हैं जहाँ सब चीज़ें भाग रही हैं, बहुत ज़रूरी है ये सब लोगों के लिए कि इस चीज़ को समझना कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके जिनके साथ आपके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, उनको आप ऑब्जर्व करते रहें। और ऑब्जर्वेशनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी के भी इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचानने का, वो नंबर एक, अगर आप सामने वाली व्यक्ति से देखते हैं कि एक आदमी ड्यू टू समथिंग कोई भी कारणवश हुआ है, बट वो आदमी बहुत डिप्रेस लेने लग गया है, वो आदमी हर चीज़ में ऑफ रहता है बहुत ज़्यादा, या वो किसी किसी चीज़ों पे बार बार एग्रेसिव हो जाता है, और आपको पता है बाय डिफॉल्ट इस आदमी का व्यक्तित्व खराब नहीं है, इसकी इंटेंशंस खराब नहीं है, बट ये फिर भी हो जाता है, तो कोई भी अगर एक्सट्रीम सिचुएशंस हो रही हैं, चाहे वो ना कुछ कहने की है या वो बिल्कुल लो फील होने की हो रही है या बहुत एग्रेसिव होने की हो रही है, तो आप यहाँ समझ जाइए कि यहाँ कहीं ना कहीं इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को एड्रेस करना ज़रूरी है। और जो चीज़ अभी सिर्फ साइकोलॉजिकल है, अगर उसको नहीं टाइमली एड्रेस किया जाए तो वो जल्दी ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्लिनिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है क्लिनिकली कि आदमी जेन्युइनली डिप्रेशन में चला गया है।
1: तो सवाल तो बहुत सारे और भी हैं, और इवन पैंथर तोमर का एक और भी सवाल है जो
0: जी
1: मैं चाहती हूँ कि अलग से लिया जाए, लेकिन उससे पहले चाह रहे हैं कि एक गाना हो जाए और लौट कर आते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाते हैं आप सबके सवालों के साथ, और मेरे सवाल भी हैं, तो आप सबके सवाल कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए फटाफट इन नंबर्स का उपयोग करिए और फटाफट अपने सवाल पूछ डालिए। भाई इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, हम सब जब लाइफ थोड़ी सी कठिन होती जा रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, क्योंकि आज टाइम नहीं है लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में हो सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ प्रश्न चिन्ह आपके उठ रहा है या आपके आसपास जो लोग हैं उन पर, तो अपना सवाल पूछ डालिए इन नंबर्स पर 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना सवाल भेज दीजिए 9868-1070-70। इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात हो रही है डॉक्टर उज्ज्वल चौक जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं, स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर एंड ऑथर, वो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो फटाफट लौट कर आते हैं इस गाने के बाद।

अगर आपको भी लग रही है इतनी बारिश में और इतने प्यारे से मौसम में चिरकुट जिंदगी, तो ऐसा करिए, इस शो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से आप

0: अपने इमोशंस को बैलेंस करें, मैनेज करें, ताकि आपको अपनी जिंदगी चिरकुट तो कतई न लगे। तो हमारे साथ डॉक्टर उज्ज्वल चुग जुड़ गए हैं और आप सबके सवाल भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। वर्क बेस पर तनाव प्रबंधन में ईक्यू की क्या भूमिका होती है, पैंथर तोमर का अगला सवाल था, तो मैं सोच रही हूँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
1: तोमर जी, ईक्यू के प्ले, अगर आप वर्क प्लेस की बात करेंगे, आपके पूरे वर्किंग के अंदर, चाहे आप कहीं काम करते हैं, चाहे आपका अपना खुद का बिजनेस है, ईक्यू के बिना आप कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसका कारण है, किसी भी वर्क की बात कर लीजिए, आजकल हर जगह पे एक वर्क प्रेशर रहता है, और उस वर्क प्रेशर के अंदर जब आपको आउट परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्किंग करनी है, चीजें निकालनी है, उस केस में प्रेशर आना बहुत लाजमी है, और बिना प्रेशर के आप एक्सपैंड भी नहीं करेंगे। मैं इसको इस भाषा में बोलता हूँ जनरली, देखिए एक गेंद है, अगर मान लीजिए मैं गेंद, हर आदमी चाहता है कि जी मैं आज की डेट में ग्रोथ करूं, बढ़ूं। अगर मैं गेंद पे प्रेशर नहीं डालूंगा तो गेंद कभी भी फैलेगी नहीं, फैलेगी। तो प्रेशर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर को इनवाइट भी करना चाहिए अगर आपके पास नहीं है। मगर अगर आपके पास ईक्यू है, तो वो वही प्रेशर जो आपको नेगेटिव फील होता है, वो नेगेटिव ना फील करके वो आपको पॉजिटिव फील होगा। कैसे? वो आपको पुश करेगा कि यार नहीं, इसको करना है। जो चीज आप प्रोकेस्टिनेट करके शायद दो दिन में करते, वो आप एक दिन में कर दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। तो प्रेशर को नेगेटिवली ना लीजिए, प्रेशर वर्क प्लेस में बहुत लाजमी है, होना होता भी है, अगर है तो कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस पे अपना सजग रहिए, तो वो वर्क प्रेशर भी आपको बिल्कुल मिठास की तरह लगेगा।
0: बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया और यह एग्जांपल दिया है। एक और सवाल आ रहा है, ये लिखा है कि मूड बहुत जल्दी जल्दी इनका खराब हो जाता है, लंबा है बट मैं छोटी सी लाइन में अगर बोलूं तो इन्होंने कहा है कि इनका मूड हर छोटी छोटी बात पर खराब हो जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे में कैसे अपने आप को ये खुश रखें?
1: ये मैं सोचता हूं जिन भी लिसनर ने सवाल पूछा है, इनका सवाल
0: नहीं लिखा है, तो मैं चाहती हूँ ये नाम भी लिख कर भेजती तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बट ये जो सवाल है, ये सवाल एक अमूमन बहुत सारी बड़ी जनता का है मैं समझता हूँ, तो इसका देखिए, इसको बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं।
0: शिव है ये मेरठ से।
1: अच्छा, शिव मेरठ से है, ठीक है शिव, आपको मेरा दिल से नमस्ते। देखिए होता क्या है कि हमारा मूड स्विंग्स या मूड खराब होना या अच्छा लगना, उसका एक ही कारण है। देखिए इमोशन या अंदर से अच्छा या बुरा लगना, ये हमारी एक इंटरनल फीलिंग है खुद की। दिस इज एन इंटरनल एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट एन आउटवर्ड एक्सपीरियंस। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर प्रॉब्लम है हमारे माइंडसेट लेवल की। माइंडसेट लेवल की क्या प्रॉब्लम है आप समझे, जब हम अपनी इमोशंस को एक्सटर्नल चीजों से जोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे डीप मानसिक माइंडसेट में ये एक चीज एनग्रेव हो जाती है कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा है, ऐसा नहीं होगा तो बुरा है। जब धीरे धीरे ये चीज कैटेगराइज करके सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में ट्यून हो जाती है, तो हमारे मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। उदाहरण देता हूं बहुत सुंदर, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, बारिश चल रही है बहुत सुंदर दिल्ली में, एक व्यक्ति जिसको आज कहीं काम के लिए नहीं जाना, जो घर बैठा है, वो कह रहा है अरे वाह वाह क्या मौसम है, चाय पकौड़े बनाओ, उसके लिए कितना बढ़िया मूड है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसको काम पे जाना है और वो वाटर लॉगिंग की वजह से फंस गया, और जिसने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, जब गाड़ी से उतरा तो पानी पानी है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है यार बारिश ने काम खराब कर दिया। देखो बारिश वही है, करेक्ट, बारिश ने तो अपना अस्तित्व नहीं बदला जी। एक आदमी के लिए वो अच्छा मूड है, के लिए खराब है, क्योंकि दोनों ने अपने मूड को बाहर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। तो एक ही इसका तरीका है, आप अपने इंटरनल एक्सपीरियंस को बाहर के ऑब्जेक्ट्स, स्थिति, सिचुएशन पे निर्धारित ना कराएं। जब आप उसमें बहुत ज्यादा निर्धारित होंगे तो आपके मूड स्विंग्स बढ़ेंगे। कभी कुछ अच्छा होता है तो बिल्कुल उसको रिलिश कीजिए, उसको चेरिश कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए। बुरा होता है तो स्वाभाविक है थोड़ा दुख लगना, मगर अपने आप को ऑब्जेक्ट सिचुएशन से एसोसिएट मत कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।
0: बसंत कुमार ठाकुर लिख रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, बहुत जल्दी मैं भूल जाता हूँ, इसके लिए क्या करूँ?
1: इसके लिए तो बसंत जी आप बादाम खाएं। बट ऑन अ लाइटर नोट, देखिए वो आई डोंट नो, अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्या आपकी कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, उस पर ऐसे कमेंट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, एक चीज जरूर है इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चीज है, उनके साथ भी भूलने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई डोंट नो आप बसंत जी क्या ये स्थिति है एग्जैक्टली, बट मैं यही जरूर कहूंगा कि ओवर थिंकिंग अपने आप में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को वीक करती है। अगर इन केस आप ओवरथिंकिंग करते हैं, चीजों को बहुत सोचते हैं, एक ही बार में सोच रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा ओवरथिंक ना करें।
0: तो यानी अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हमें बहुत ज्यादा किसी टॉपिक को लंबा तो नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं, तो अपना गुरु खुद ही बन

0: हाँ बिल्कुल, आपको बनना पड़ेगा,
1: पड़ेगा।
0: देखिए आज की डेट में आप सच्ची बात इसको ऐसे लीजिए, अगर आप किसी गुरु को धारण भी करते हैं जो कि कोई गलत बात नहीं है, और मान लीजिए अगर आपके कोई इष्ट देव है या जिसमें आपका भाव लगता है, या आप किसी को अपना मेंटर मानते हैं, तो मेंटर आपके लिए नेविगेशन का काम करता है, जैसे गूगल मैप्स है। भाई मुझे यहां से पहुंचना है, मैं मैप को यूज करूंगा, तो वैसे ही मेंटर है, गुरु है, बट पहुंचने के लिए कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा, तो सजग तो खुद ही रहना पड़ेगा।
1: इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए खाने पीने पर भी ध्यान देना है क्या?
0: बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और बड़ी जरूरी चीज है। देखिये अभी हमने बात करी इमोशन, इमोशन मतलब एक इंटरनल एक्सपीरियंस है। इंटरनल एक्सपीरियंस किस चीजों से बनता है? इंटरनल एक्सपीरियंस से बनता है हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, कहते हैं ना जैसी संगति,
1: हाँ,
0: है ना, कैसे लोगों से हम बात करते हैं, अपने पूरे दिन को हम किस तरीके से किन कामों में बिजी रखते हैं, किस टाइप की हम चीजें करते हैं, किस टाइप के लोगों से हम बात करते हैं, हर एक चीज छोटी से छोटी मेरे इंटरनल मैकेनिज्म को, मेरी फिजियोलॉजी को डिफाइन करती है। सिमिलरली फूड जो एक एनर्जी का एलिमेंट है, अगर मैं आपको बासा खाना दे दूं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक बासा खाना खाया और वो एनर्जी एक्चुअली में वो एनर्जेटिक फूड नहीं है, ठीक है ना, उसने मेरी स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सिमिलरली व्हाट यू एट वो आपके पूरे फिजिकल लॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक खाना खाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, आप कभी भी देखिएगा वो बहुत ज्यादा, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कंपेरेटिवली सात्विक लोगों से बहुत वीक होगी, क्योंकि तामसिक जब आप खाना खाते हैं वो खाने में ही, वो खाने में ही तमस है, जिस खाने में तमस है उस केस में आपका इमोशन पे एक्सट्रीम जाना बड़ा ही स्वाभाविक है, या तो आप बहुत एग्रेसिव हो गए, या आपका एकदम से कभी कभी मूड खराब हो जाता होगा, या किसी ने आपके साथ छोटी सी दोस्ती में किसी ने कुछ नहीं निभाई तो आप बिल्कुल ही उससे एकदम से इतने दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप कहोगे यार उसने कर कैसे दिया, उसने बोल कैसे दिया। तो खान पान इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: चलिए आपने खान पान की बात की जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम
0: सात्विक खाना,
1: बिल्कुल आपने बताया उसका इलाज भी, लेकिन कई बार होता है, आपने कहा एक और बात मेंशन की कि कैसे माहौल में रह रहे हैं, इसका भी हमारे ऊपर वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि कैसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, हमारा जो बिल्कुल अपना है वही आपको टॉक्सिक लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे ऐसे?
0: बहुत सुंदर सवाल है। देखिए हर आदमी इतना ब्लेसेड नहीं होता, इसलिए मैं अक्सर उन लोगों को कहता हूं कि जो अच्छी जगह पे हैं हमेशा इसका धन्यवाद करो भगवान से, क्योंकि आप इतनी अच्छी जगह पे हो।
1: हाँ।
0: अब किन्हीं की मजबूरी और परिस्थिति ऐसी है कि वो ऐसे एनवायरमेंट में ही नहीं है और उनको रहना भी पड़ रहा है।
1: हाँ।
0: तो देखिए क्या होता है कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से ना कुछ समय आप नियम बना लीजिए, जैसे खाना खाते हो आप, यूड गो फॉर अ बाथ, ठीक है, आपने कुछ अपनी दिनचर्या बनाई है, कुछ समय अगर आप अपने आप के लिए परमानेंटली निकालते हो कुछ चीजों के लिए, जिन क्या चीजें हैं उन चीजों पर भी हम बात कर लेंगे, तो आप अपने आप को रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने का मतलब उस एनवायरमेंट में, जिस एनवायरमेंट में आपको उस लेवल की एनर्जी नहीं मिल पाती, फिर भी आप अपने खुद के माहौल से, अपनी उस पर्टिकुलर रिचुअल से, अपनी उस रूटीन से अपने आप को रीसेट करके डेली डिटॉक्स कर सकते हो।
1: अच्छा, इस पर हम जरूर बात करेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन उद्देश्य ही शो का यही है। तो एक सवाल और लेते हुए चलते हैं जो पैंथर ने लिखा है, एक बार फिर से इन्होंने लिखा है कि 10 साल का छात्र बार बार असफल हो रहा है और इसके कारण वो मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों से जूझ रहा है, इस स्थिति में ईक्यू के सिद्धांतों का उपयोग करके हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो ये लगभग उसी तरह का सवाल है कि हम क्या ऐसा करें, कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस में लाएं जिससे हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हुए भी जहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं।
0: देखिए ये सवाल ज्यादा बच्चों के कंटेक्स्ट का है, तो मैं बच्चों के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ संवेदनशील चीजें मैं बोल देता हूँ। पहली बात देखिए, ध्यान रखिएगा, आज का बच्चा जो है ना सबसे स्ट्रांग, जिस ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे थे कि आप दृष्टा बन के ऑब्जर्व करिए अपने आप को, बच्चे के अंदर सबसे स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन होती है। बच्चा जितनी छोटी अवस्था में होता है वो ऑब्जर्व करके माँ बाप को, लोगों को, आसपास की चीजों को सीखता है। तो सबसे पहले अगर आप खुद इमोशनली अनस्टेबल हो और बच्चा आपको शुरू से वो देखता हुआ है कि आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप इमोशनली बहुत ऑफ हो जाते हो, तो वो तत्व बच्चे के अंदर आएगा ही आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन से वो सीखता है, जैसा आप अपने आप को ऑपरेट करेंगे बच्चा वैसा बनेगा, नंबर एक। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व बच्चों के केस में कहना चाहूंगा, बच्चों के ईक्यू के हिलने का कारण, जो कि बहुत जरूरी है, मैं बहुत जिम्मेवारी से एक बात बोल रहा हूं, इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा, एक समय ऐसा आने वाला है, आज से 2-3 साल पहले, मैं आपके इस पर्टिकुलर एफएम रेनबो पे आज एक बात बोल रहा हूं, आप देखेंगे कि ये आम हो जाएगा, हर तीसरे बच्चे को नॉर्मल फोन और एआई चलाना आता होगा, और ये कहेंगे, लोग कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात वो होगी कि जब वो बच्चा जिसने 7-8 साल की अवस्था तक उसके माँ बाप ने उसको फोन ही नहीं दिया होगा, वो बच्चा देखिएगा कैसा हीरा बन के निकलेगा। उसका कारण है, देखिए एक सिंपल सिद्धांत है, जो चीज अबंडेंस में आ जाती है ना वो रुल जाती है, जो चीज स्कैरसिटी में है उसका हमेशा से इंपॉर्टेंस मोल है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज की डेट में जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, बच्चे को अगर आप कोशिश कर सकते हैं, और उसके लिए माँ बाप को नियम बनाना पड़ेगा, उसके लिए माँ बाप को नियम बनाना पड़ेगा कि अगर शुरुआत के आप 5-4 साल की अवस्था तक बच्चे को फोन बिल्कुल मत दें, जो कि आज से आदत लग चुकी है, तो फोन एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे की पेशेंस को लूज करने का। स्क्रीन टाइम पे बैठने की वजह से बच्चे का इमोशनल इम्बेलेंस हो रहा है और इमोशनल ईक्यू पूरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
1: ओके, तो डॉक्टर उज्जवल, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं और मुझे टाइम तो बिल्कुल इजाजत ही नहीं दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको 2-3 मिनट दूंगी। चलते चलते आपने कहा था मैं वो कुछ प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ, और कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस जिससे हम अपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं।
0: देखिए आज की डेट में आपके पास माहौल है नहीं है, जो भी आपकी परिस्थिति है, मैं कुछ आपको एक मास्टर गाइडलाइन सारे के सारे लिसनर्स के लिए, जो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी और ये इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहेंस करेगी, पर्सनल प्रोफेशनल हर रिलेशंस को आपके एम्पावर करके आगे बढ़ाएगी। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितना आप अपने इंटरनल सिस्टम को लेकर के सजग हो सके, उस पर कंट्रोल आ सके। कंट्रोल लाने का एक ही तरीका है कि आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल के अंदर 3 चीजें मैं बोलता हूं इसको, सबसे पहले हेल्थ, तो हेल्थ को लाने का, और हेल्थ में सारी आ जाती है, फिजिकल इमोशनल मेंटल एंड फाइनली मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात भी करता हूं, ठीक है। तो उसके लिए आप रूटीन बनाइए, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं कि आप रोज का 1 घंटा अपने आप को देते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोलूंगा कि अगर आप उसमें अपने आप को योग साधना के लिए अलाइन कर सकें तो दैट इज मोर प्रिसाइजली अलाइंड। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम जिम जाते हैं, देखिए जिम जाना कोई गलत नहीं है, आप जाइए बिल्कुल है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा छोड़ दीजिए आप उसके साथ, बट थोड़ा सा योग साधना जो सही योग साधना है, क्योंकि लोगों को योग का मतलब भी सही मायने में नहीं पता, क्योंकि जब आप जिम वगैरह करते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, जब आप फिजिकल डायमेंशन पे काम कर रहे हैं तो फिजिकल डायमेंशन पे सिर्फ अगेन आप फिजिकल बॉडी को चार्ज अप कर रहे हैं, इमोशन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो कि खेल आपका इमोशंस का है, आपके माइंडसेट का, आपके मेंटल लेवल का है। उसके लिए जब तक आप इंटरनल सिस्टम पे काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और वो आपको योग साधना देती है। जब आप योग अलोंग विद प्राणायाम अलोंग विद मेडिटेशन के साथ अलाइन करके, तो आपकी बॉडी, तो जैसे वो कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं, तो शिवानंद जी कह रहे हैं, स्वामी शिवानंद क्या कह रहे हैं कि योग वो है जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप कर्म करते हैं, जब ये तीनों सिंक में आ जाता है तो उसी को योग बोला जाता है। तो ये तीनों को सिंक में लाना तभी पॉसिबल है जब फिजिकली मेंटली इमोशनली यू आर अलाइंड, एंड दैट कैन ओनली हैपन वंस यू हैव योग साधना। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप एक योग साधना धारण करें। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रात को सोते वक्त आप अपनी एक प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि आजकल लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम रात की वजह से है। एक तो रात को जाकर के फोन देखना, दूसरा लोगों की ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से इंसोमनिया की प्रॉब्लम, तीसरा लोगों की स्लीप, नींद बहुत रेस्टलेस है। तो रात को आप शुरू कर दीजिए नियमित योग निद्रा करनी शुरू। योग निद्रा वो साइंस है जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपके चित्त को जा करके इस लेवल पे ट्यून करती है कि जो आप संकल्पित करेंगे सबकॉन्शियस लेवल पे वो पूरा का पूरा आपका फलीभूत होगा। सो डू दीज 2 practices एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल और आपको बहुत सारे फायदे होंगे।
1: ओके, तो यहाँ पर तो वैसे बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आपने जवाब दिया है वो उसका सलूशन निकल ही गया है। फिर मैं पढ़ देती हूँ कि इमोशंस में बहकर मैं अपनी सारी बातें बता देती हूँ, बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज्यादा बातें शेयर नहीं करनी चाहिए थी। ये निधि प्रयागराज से कह रही हैं, इससे मैं कैसे इस आदत को कैसे दूर करूँ?
0: आपका भी जो सवाल है निधि, प्रिसाइजली इट इज जस्ट अबाउट कि आपने बोला इमोशन में भय करके, तो हमने पूरे शो में बात ही इमोशंस को मैनेज करने की करी है। तो मैंने जो लास्ट टिप दी है ना, आप अपनी लाइफस्टाइल में दो चीजों को उतारिए और हम खुद संकल्पित होकर के, मैं इसको इतना बढ़ावा देकर के लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ, आप योग साधना लाइए अपने अंदर, आप देखेंगे इमोशंस भी मैनेज कर पाएंगे और उसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह पे आप खुद महसूस करेंगे बहुत सुंदर तरीके।

0: यानी आपने बताया कि योग से हर चीज़ पॉसिबल है और इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत आसानी से आपके अंदर आ ही जाएगी। और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि मतलब पूरे शो में जो जितने भी सवाल आए हैं, हर तरह के सवाल आए हैं, उन सबका जवाब बहुत ही अच्छे से आपने उदाहरण सहित दिया है। आज की जो नॉर्मल लाइफ है उसमें किस तरह से हम उन चीज़ों को उतार सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया से आपने बताया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आज हमने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर उज्ज्वल चुग से, जो कि स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर और ऑथर है। और आप सबका बहुत धन्यवाद इतने प्यार से सुनने के लिए, और डॉक्टर उज्ज्वल चुग का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरी गंगा जी हिमालय से प्रार्थना है कि आप सब जितने लिसनर्स हैं सबकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़े एंड यू मस्ट हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में आज नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित रही। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पॉलीमर बैंक नोटों को कागज वाले बैंक नोटों के साथ ही जारी करने का प्रस्ताव है। केंद्र ने 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामले में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आज संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। हिमाचल प्रदेश में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 महीने के एक शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान कथित तौर पर 20 लोग मारे गए और कई घायल हुए। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका शरण प्रणाली में बदलाव किया है जिसके तहत आवर्जन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आवर्जन न्यायाधीशों के पास भेज सकेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा कल तक के लिए स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासांगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन, लेकर आई हूं आशियाना। और आज बात हमारी यानी वेमेन स्पेशल टाइम है और बात करेंगे अपनी। तो देखिए, हमारी राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए कि डिनर में क्या बनाएं और हम आज क्या पहनकर ऑफिस जाएं। ऐसे में जब बात हो मानसून की, तो मानसून दस्तक दे चुका है, हमें गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन साथ ही एक जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि ऐसा क्या पहने कि हम कूल भी दिखें, स्टाइलिश भी दिखें। और अचानक से जब बारिश होने लगे, हम कीचड़ में हों, कुछ हल्के रंग के कपड़े पहने हों या फिर कपड़े गीले हो जाएं, देखिए हमें तो स्टाइलिश दिखना है, चाहे कॉलेज जाना हो चाहे ऑफिस जाना हो, लेकिन कुछ ऐसा भी कैरी करना है जो कि मौसम के अकॉर्डिंग हो। तो चलते हैं इसी बारे में बात करते हैं कि मॉनसून में, बारिश के दिनों में महिलाएं ऐसा क्या वेयर कर सकती हैं जो स्टाइलिश भी हो कूल भी हो। तो इसी पर बात करते हैं और शुरुआत करते हैं आराम, स्टाइलिश और कुछ ऐसे फैब्रिक की जो आपको ट्रेंडी लुक देता हो, आप कंफर्टेबल फील होते हो और आप जो है ना अपने पहनने के साथ, यानी आप कैसे दिख रही हैं, आप अपनी अपेयरेंस के साथ कोई समझौता ना करें। देखिए, जो सबसे पहली शुरुआत की जा सकती है ना, वो कुछ इस तरह से की जा सकती है कि जब घर से निकले ना तो नो मेकअप लुक में चलें। अजी, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, अपनी अपनी एजुकेशन, अपने स्टाइल, अपनी सेंस के साथ जब आप तैयार होती हैं ना तो आप वैसे ही भला की खूबसूरत लगती हैं। तो क्यों ना ज़रा बारिश के टाइम पर, मॉनसून के टाइम पर अपने मेकअप किट को साइड में, यानी पर्स की साइड में रख लें। आप जब एक बार किसी कन्वीनियंट पैलेस पे पहुंच जाएं, सपोज़ आप मेट्रो में हैं, आप मेट्रो में मेकअप ले सकती हैं या फिर ऑफिस पहुंचकर, कॉलेज पहुंचकर, लेकिन जब घर से मेकअप करके चल रही हैं तो मैडम बारिश के साथ छम छम हो सकती है।

0: रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, तो गर्ल्स बात कर रहे हैं कि क्या ट्रेंडी है, क्या स्टाइलिश है, स्पेशली इन मॉनसून। आप सुन रहे हैं आशियाना आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। तो लीजिए, आप चॉइस कीजिए, चूज कीजिए कॉटन ब्लेंडेड कपड़े जो कि जल्दी सूख जाते हैं, और इस उमस भरे मौसम में, मतलब बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन कहीं कहीं जब आप एकदम से एसी में या फिर बिना एसी के आसपास रहते हैं तो आपको लगता है कि उमस सी फील हो रही है, कुछ तरोताजा आसपास होना चाहिए, यानी आपके कपड़े जो कि आपको चिपक नहीं रहे हो। तो ऐसे में कॉटन ब्लेंडेड जो कपड़े हैं वो आप चूज कर सकती हैं। और साथ ही रेयॉन की बात करें तो रेयॉन फैब्रिक जो है वो सॉफ्ट होता है और हल्का होता है, साथ ही स्टाइलिश भी दिखता है। तो आप उमस भरे टाइम पर जो है रेयॉन फैब्रिक भी चूज कर सकती हैं। क्रैप और जॉर्जेट जैसे जो कपड़े हैं वो खास तौर पर बरसात के मौसम में कैरी करना सही रहता है, जल्दी सूख जाते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे देखते हैं कि हैवी जींस आपने पहन रखी है तो कितनी देर लगती है जब वो थोड़ी भी गीली हो जाती है और वो ज्यादा अब्जॉर्ब भी कर लेती है। आप जो हैं कुछ ऐसे कपड़े भी चूज कर सकते हैं जो कि शॉर्ट हो, मतलब इतनी भी लॉन्ग ना हो आपकी पैंट या आपकी लेगिंग जो आपने पहनी है, आप उसे नी लेंथ तक का चूज कर सकते हैं। और आप एक

एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी कैरी कर सकते हैं, ताकि आप अगर भीग जाएं, मतलब आप ही के साथ बारिश ने साजिश की हो कि भिगोना ही भिगोना है, चाहे छाता लेकर चलिए या फिर कुछ भी, भीग गई हैं तो अपना वो एक्स्ट्रा ड्रेस जो बैग में रखा है उसे निकालिए और हो जाइए तैयार।

अपने आप में देखिए, ऐसा कई बार होता है कि बारिश सोच कर आती है कि आपसे ही मिलना है, यानी तुमसे ही मिल जाती हूँ। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम है आशियाना विमेन स्पेशल। बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा पहने मॉनसून में, बारिश में, कि हम कूल और स्मार्ट भी दिखें और अपने स्टाइल के साथ कोई समझौता ना हो। रिमझिम बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं होता, चाय पकौड़े का दौर, ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम, लेकिन फैशन के शौकीन लोगों के लिए थोड़ी आफत तो हो जाती है। रास्ते में कीचड़, पानी की बौछारे और उमस भरा मौसम। तो देखिए, हमने बात तो कर ली है कि आपको जॉर्जेट, रेयन, शिफॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर बेस्ड कपड़े पहनने। ये फैब्रिक हल्के होते हैं, भीगने पर फटाफट सूख जाते हैं और सिकुड़न भी नहीं होते, मीन्स प्रेस नीडी नहीं होते हैं ये। तो डेनिम नहीं पहनना है, हैवी सिल्क या फिर मोटे कॉटन से भी आपको बचना है। और क्या करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताती हूँ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: प्रोग्राम है आशियाना और मैं हूँ सृजन। बात करते हैं एक बार फिर शुरू की क्या पहने हम अपने लिए, क्या चूज करें मॉनसून में। देखिए अभी लेंथ का खास ख्याल रखना है आपको, फुल लेंथ आउटफिट्स को थोड़े दिन के लिए अलमारी में साइड कर दीजिए। फ्लोर लेंथ अनारकली, मैक्सी ड्रेसेस, लंबी जींस बिल्कुल काम नहीं आने वाले इस मौसम में। आपको घुटनों तक की शॉर्ट ड्रेसेस, मिडी स्कर्ट, कर्पीज या फिर क्यूलॉट्स जैसी शॉर्ट्स को ट्राई करना चाहिए, ट्रेंडी है, सेफ ऑप्शन है। और आप जो है ना एथनिक लॉन्ग कुर्तीज भी अगर पहन रही हैं तो उनके साथ भी आप शॉर्ट कुर्ती कैरी कर सकती हैं, यकीन मानिए ये भी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, क्या चुनना है तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको वाइट और जो ट्रांसपेरेंट से कपड़े हैं ना पेस्टल कलर्स वाले, उन्हें पहनने से बचना है क्योंकि भीग कर ये विजिबल हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं, और अगर इन पर कीचड़ के दाग लग गए तो फिर तो आप ऑफिस में क्या करने वाली हो, उसको घिसने लिए नहीं ना, तो इनसे भी बचें। आप जो है नियॉन कलर्स, ब्राइट येलो, हॉट पिंक, इलेक्ट्रिक ब्लू, ऑरेंज या फिर मिंट ग्रीन जैसे कलर्स पहनिए। और अगर बारिश के मौसम में इन कलर्स के साथ सेल्फी या पिक क्लिक करेंगी ना तो यकीन मानिए आप बिल्कुल परफेक्ट लगने वाली हैं। अच्छा, फुटवेयर में भी आपको थोड़ी सी ज्यादा समझदारी दिखाकर चलना है, तो आपको अपने जो लेदर के शूज हैं, स्नीकर्स हैं, हाई हील्स हैं, इनको भी साइड कर देना है। और क्योंकि हमें पता है बारिश में लेदर खराब हो जाता है, हील से फिसलने का डर होता है, तो क्या करना है, रबर और सिलिकॉन की फंकीज बैलीज चुनिए। ट्रेंडी फ्लिप फ्लॉप्स, क्रॉक्स या फिर वाटरप्रूफ सैंडल्स जो हैं मार्केट में, आप देखिए ना कितने स्टाइलिश और रंग बिरंगे गम बूट्स भी आ रहे हैं ना, तो शॉर्ट ड्रेसेस के साथ ये कूल लगने वाले हैं। मिनिमम मेकअप कीजिए, वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहां तक ही नहीं, आप अपनी जो आपका अम्ब्रेला है ना, छाता, ये भी स्टाइलिश सा ले सकती है। मार्केट में ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेलाज हैं, फ्लोरल

फंकी कोट्स और नियॉन शेड्स की रेन कोट्स भी इनफेक्ट ट्रेंड में है, तो बस हो जाइए तैयार क्योंकि सावन की तो पूरी तैयारी है। शुभा मुद्गल की आवाज में अब के सावन ऐसे बरसे।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन के साथ। तो गर्ल्स आप अपने हैंड्स जो है ना फ्री रखिए और अपने बारिश वाले हैंडबैग्स में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। मीन्स बारिश में जो आपको हैंडबैग लेकर चलना है वो क्रॉस बॉडी बैग होना चाहिए, या फिर आप छोटे छोटे जो रेन प्रूफ बैग्स आ रहे हैं ना वो भी ट्राई कर सकते हैं, यानी आपके स्टाइल में चार चांद लगा सकती है। और हेयर्स की बात करें तो हेयर जो है हेयर फॉल भी आम हो जाता है इस सीजन में, तो ऐसे में आप हाफ बन पोनी ट्रेल या ब्रेड जैसे सिंपल हेयर स्टाइल जो है कैरी कीजिए, क्योंकि और फिर ज़्यादा ऐसे बाल उलझ गए तो फिर

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय

0: भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
1: सुंदर प्यारा गीत, टिम टिम तारा जादुई पिटारा, हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
1: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो उनकी मित व्ययिता

0: का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
1: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गंवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।
1: जी श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
1: जी,
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित।

0: हाँ तो बच्चों बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब। मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता बताओ बेटा तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी
0: बोलो लता क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते।
6: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी आप
8: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते। यहाँ बैठिए
0: जी।
8: यहाँ आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
0: हाँ ये तो है।
8: अरे लो लता के बापू भी आ गए।
0: राम राम दादा। हाँ, कैसे हैं आप?
9: राम राम। अरे आप यहाँ? लता ओ लता बहन जी के

0: की शरबत तो ला।
1: इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
2: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
1: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
2: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
1: अच्छी, और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
2: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी, दी, दी।
1: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
2: जी।
4: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
5: दौड़ने की प्रतियोगिता होने वाली
2: है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
6: दीदी लता।
5: जी दीदी।
2: क्या ये लता?
5: जी दीदी।
2: अरे नहीं।
5: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
2: अच्छा,
5: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया, सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
2: अच्छा
5: जी दीदी।
2: लता ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इस पे हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो।
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी

0: सोचा ही नहीं था।
1: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
0: जी
1: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
0: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
1: वाह दादा, लाख चके की बात कही आपने।

0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
1: चोर बना देती
2: हूँ। मैं क्या करूँ, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
3: हाँ हाँ,
2: पता है मेरी मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
3: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
3: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
3: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
1: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
3: ठीक है आ जाना।
1: अच्छा,
3: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
3: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
0: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को कमल किशोर का नमस्कार। मित्रों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिगर बड़ा हो तो मंजिल भी झुक जाती है। जी हाँ, जिगर बड़ा हो तो मंजिल भी झुक जाती है, इरादों के आगे हर मुश्किल रुक जाती है। यानी किसी बड़े काम के लिए, मुश्किलों से जूझने के लिए जिगर का, यानी कि जिगरा का बड़ा होना बहुत जरूरी होता है, ये सभी जानते हैं। कलेजा होना चाहिए, ये कहा जाता है। मेडिकल साइंस में, अंग्रेजी में इसे लीवर या हिंदी में यकृत कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि लीवर, यकृत, जिगरा, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आंतरिक अंग होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। और वैसे लीवर में कई काम होते हैं, जैसे कि ये पित्त यानी कि बाइल बनाता है, भोजन और खासकर वसा को पचाने में मदद करता है, यह खून से हानिकारक और जहरीले पदार्थों को छानकर बाहर करता है। और इसीलिए लीवर का बिल्कुल स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। लीवर का अगर ख्याल ना रखें तो बीमारियों का डर भी बना रहता है कि कब कैसे क्या हो जाए। उनमें से एक है हेपेटाइटिस। तो मित्रों, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, आज मौका भी है और दस्तूर भी, सवाल तो बनता है ना जी। तो इसी विषय पर, यानी हेपेटाइटिस विषय पर जानकारियों के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो डॉक्टर्स को, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव सहगल जी, आप हेपेटोलॉजी एंड लीवर ट्रांसप्लांट एंड प्रेसिडेंट लीवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया 2025 के वाइस चेयरमैन और हेड हैं। और दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया जी, आप एम्स न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रोफेसर हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: तो आप हमारे एक्सपर्ट से परिचित हो चुके हैं और इस वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं और डायल कर सकते हैं, इसी वक्त अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा। और हाँ, आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, यानी डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। और उसके लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। जी हाँ, एक बार नंबर फिर से हम दोहराए देते हैं, फोन नंबर 011-2342-1080 और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082 और व्हाट्सएप मैसेज के लिए 9810707070।

0: दिल ला। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी खिदमत में फिर वही दिल लेकर के आए हैं और कुछ सवाल भी आप लेकर के आए होंगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और जब तक आपके फोन कॉल आते हैं तब तक हम डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं कि ये हेपेटाइटिस वास्तव में होता क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है या नहीं करता है, जब हो जाए तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज हमारे साथ दो दो एक्सपर्ट हैं। जी दो दो एक्सपर्ट्स हैं और नंबर हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 2342-1080 और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342-1082। और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप हमें अपनी बात कह सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए और तुरंत इसी वक्त मैसेज कीजिए 9868107070। जी तो डॉक्टर साहब, ये जो हेपेटाइटिस शब्द हैं सुनने में बड़ा भारी भरकम सा लगता है, क्या ये बीमारी भी कुछ भारी भरकम से कुछ मुश्किल वाली है डॉक्टर?
1: या बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हेपेटाइटिस का अर्थ है कि लिवर में सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो लिवर में जब इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, वेरी ब्रॉड वे। और इसके कई सारे कारण हैं और सबसे कॉमन कारण जो होते हैं, एक होता है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और भी वायरस है ए और ई, या

0: को अल्कोहल की लत लग गई है तो शराब के माध्यम से लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है,
1: जी
0: या फैटी लिवर डिजीज से जिसका हम जिक्र बहुत कर रहे हैं आजकल। इसके अलावा ड्रग्स एंड टॉक्सिंस जो हम कई बार अनरेगुलेटेड दवाई खाते हैं, कुछ बिना किसी के प्रॉपर एडवाइस के ऑनलाइन दवाई मंगाई खा ली, हेल्थ बूस्टर खा ली है, और भी जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं कहीं ना कहीं से लिवर के थ्रू जाती हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, मेटाबॉलिक जेनेटिक वगैरह। तो हेपेटाइटिस अपने आप एक वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला, ऐसा कि ब्रॉड अम्ब्रेला सबको कवर करता है।
1: जी
0: जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे जो हमारा फोकस रहता है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लिवर के खराब होने का। लिवर में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लिवर में उसकी हम जैसे डिस्कस करेंगे
1: जी
0: कैसे लिवर को खराब, सिरोसिस, लिवर कैंसर और भी
1: जी
0: प्रॉब्लम करता है।
1: जी बहुत सारी
0: जी,
1: जी
0: तो इस तरह से हेपेटाइटिस को अगर हम समझें तो एक एक ब्रॉड अम्ब्रेला समझते हैं और इस सारे कारण उसके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं।
1: जी डॉक्टर गोविंद जी, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कहा जाता है कि जो संक्रमण का दर जो होता है वो कुछ बढ़ जाता है, तो इस संक्रमण के चलते भी क्या हेपेटाइटिस हो सकता है?
2: कमल जी, एब्सोल्युटली यस। जब बरसात होती है तो पानी जनरली दूषित हो जाता है,
1: जी
2: जो पानी पीने का आता है।
1: जी
2: अगर आपने फिल्टर नहीं किया प्रॉपरली पानी को,
1: जी
2: तो फिर वो उससे इन्फेक्शन हो जाती है। दो तरह की इन्फेक्शन होती है। पहला इन्फेक्शन की जो मोस्ट वायरल इन्फेक्शन होती है, वायरल, तो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस,
1: जी
2: पेट की आंतों का इन्फेक्शन होता है, उससे डायरिया होता है और वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है।
1: जी
2: कभी कभी इन्फेक्शन जो होता है वो हेपेटाइटिस ए का भी होता है और ई का भी होता है। तो 5 वायरस होते हैं, जिस तक सेगल ने बताया कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है। दे आर 5 वायरसेस, हेपेटाइटिस ए और ई। जो 2 वायरस है वो वाटर से होते हैं,
1: जी
2: वाटर कंटेमिनेशन से,
1: जी हाँ
2: और जो बी और सी होते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वो ब्लड से होते हैं, ब्लड या
1: जी
2: थ्रू सेक्सुअल रूट होते हैं। तो ड्यूरिंग बरसात में हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है।
1: मतलब ज़्यादा संभावना बनी रहती है।
2: एब्सोल्युटली
1: जी
2: यस।
1: डॉक्टर साहब, कुछ अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक फ़ोन कॉल लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हेलो
3: हेलो,
1: जी, नमस्कार
3: नमस्कार। मैं सतीश बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। 5 साल पहले मैंने अपने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराया था, तो 7-8 मिलीमीटर का स्टोन था गॉल ब्लैडर में।
1: जी
3: 2 साल पहले फिर रिपीट कराया, सेम साइज का सॉलिटरी स्टोन है। क्या मुझे सर्जरी के लिए सोचना चाहिए या कोई सिम्टम नहीं है, मेरे को पेन वगैरह कुछ नहीं होता है?
1: सतीश जी, वैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है हेपेटाइटिस पे है, और हेपेटाइटिस पे अगर आप सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। खैर, आपने पूछा है तो डॉक्टर्स हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, ही थोड़े से जवाब दे देंगे।
0: सतीश जी, आपकी उम्र कितनी है?
3: 78।
0: सो देखिए, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इसको हम कहते हैं ए सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन, मतलब आपके बॉडी में स्टोन पाया गया गॉल ब्लैडर में लेकिन कोई सिम्टम आपका नहीं है और आपकी एज ऑन हायर एज साइड है, 78 है। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर सिम्टम नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको कुछ और इशू नहीं है और जस्ट एक रूटीन स्क्रीनिंग में आ रही है, तो ये अनिवार्य नहीं कि इसका आप सर्जरी कराएं।
1: जी
0: इसको आप सिंपली रेगुलर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। सेम प्रॉब्लम अगर किसी यंग किसी में आती है इंडिविजुअल में, मुझे पता है कि मेरा कोई एक पेशेंट है, कोई पायलट है, उसको ट्राई फ्लाई करना पड़ता है, इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी पड़ती है, उसको गॉल स्टोन है
1: जी
0: एक 10 सेंटीमीटर, 10 mm का। उसमें क्या होता है कि उसमें उसके लिए कई बार एक इलेक्टिव सर्जरी करी जाती है, जहाँ पर लगता है कि उसके अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम उस कॉम्प्लिकेशन को हम नहीं अलाउ करेंगे।
1: जी
0: लेकिन आई थिंक दैट इन योर केस, आपके केस में हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। कुछ डायटरी प्रिकॉशन लें, आप ऑयली फ्राइड फैटी चीज़ कम खाएं और अपना रूटीनली जैसे किसी डॉक्टर की निगरानी में रहें, पर मैं इसको ऑपरेशन की सलाह इस समय नहीं दूंगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और अपने सभी श्रोताओं को हम बता दें कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस विषय पर, यानी कि हेपेटाइटिस के विषय पर आप सवाल पूछिए और जानकारी लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो डॉक्टर्स, डॉक्टर संजीव सहगल जी और डॉक्टर गोविंद मखारिया जी। हेलो, हम एक फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है। तो
1: जी
3: सबसे पहले तो एंकर साहब और दोनों डॉक्टर साहिबान को तहे दिल से नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
3: जी, मेरे 3 सवाल हैं। मैं लगभग गालिबन 5 महीने से ये पेट की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। लिवर के आसपास मेरे को क्या होता है, खाना खाने के बाद ना, मैं पहले मैं 4 फुलके खाया था, अब एक ही फुलका खा पा रहा हूँ। तो लिवर के आसपास दाई तरफ गर्मी जलन गैस सी हो जाती है। अब मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि ये मुझे जो है ये हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है लिवर में, या लिवर फैटी है या लिवर में अल्सर हो गया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और गैसी बहुत बनती है, और दूसरा अगर मैं इसके लिए ये लिवर सिरप

0: एक दवा अगर मैं उसका सेवन करूं तो क्या ठीक रहेगा? और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब तीसरा सवाल कि इसके लिए मैं जो है ये इनो आती है और लिमका आती है और आंवले का और ये क्या नाम है बेल का शरबत आता है उसका सेवन कर रहा हूँ तो मुझे टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है पर परमानेंट नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: राजेंद्र जी आपके तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पहले ये बता दूं आपको मैं कि लीवर में अल्सर नहीं होता है और लीवर में अगर थोड़ी सूजन हो उसे कोई सिम्टम नहीं होते हैं, उसे कोई तकलीफ अगर लीवर बढ़ भी गया आपका तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है आपको, पर उससे गैस नहीं बनती है। तो पहली बात जो लीवर को पता करने की लीवर बीमारी है या नहीं है उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट या एक अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके लिए। ना आप अब आते हैं आपके सिम्टम में, आपने बताया कि आपके पेट में दाएं तरफ में दर्द होता है या थोड़ा या फिर खाने का पेट फूल जाता है आपका, ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया और इसके बहुत से कारण होते हैं। अगर आपके स्टमक में या फिर या डोडना में छोटी आँख में अल्सर हो वो सिम्टम हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें अगर हम एग्जामिन करें पूरे सिस्टम को तो नॉर्मल आता है वो और दिस कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो मुझे लगता है कि आपको दवा लेंगे एसिड कम करने की दवा आती है, आप किसी फिजिशियन से मिले जो आपके डॉक्टर पास घर के पास में उनसे मिले वो दवाइयाँ लिखेंगे और इसका इलाज संभव है। मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ी बीमारी है। और लीवर के लिए अगर सिंस आप डॉक्टर पर जाएंगे तो लीवर टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट और पेट का अल्ट्रासाउंड।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब अपने सभी श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे क्योंकि जब भी हम बातचीत करते हैं तो मेडिसिन की बात जरूर आती है, ट्रीटमेंट की बात
3: वो लीवर टॉनिक वाला ना लें, वो आप जो ले रहे हैं वो आप बिल्कुल उसको ना लें, ऐसे कोई टॉनिक नहीं होती है। ये लोगों का एक भ्रम है कि हम पी ली और आप बेटर हो जाएंगे, तो कृपया करके बिना किसी एडवाइस के मेडिकल एडवाइस के ऐसी कोई लीवर टॉनिक मत लें।
1: जी यानी कि डॉक्टर साहब का कहना ये है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, अपने आप कोई भी दवाई ना लें। और जब तक अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर साहब इन्होंने जैसे कहा कि इनके पेट में राइट साइड में जलन होती है और इन्होंने सीधे सीधे उसे लीवर से जोड़ दिया, क्या ऐसे हर समय संभव हो सकता है कि जलन हुई और लीवर में ही प्रॉब्लम हुई, ऐसा तो नहीं है?
2: ऐसा नहीं होता। लीवर इसे बताया कि लीवर में अगर सूजन हो रही है ना तो कोई सिम्टम नहीं होते
1: जी।
2: तो ये भी बता दूं अभी आपको, ये अच्छा मौका बताने का कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें ह्यूज कैपेसिटी है
1: जी,
2: भगवान ने हमें भर भर के दिया है और हमें बहुत कम चाहिए उसका, हर एक ऑर्गन का। तो अगर वो ऑर्गन किसी कारण से ख़राब हो रहा है, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, या अल्कोहल की लत लगे हुए हैं, साल साल अल्कोहल पी रहे हैं, या कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया उनको, तो लॉन्ग टर्म में 10-5 साल और ज़्यादा वो सूजन चलती है, तब जाके लीवर ख़राब होता है।
1: अच्छा।
2: तब जाके उनके सिम्टम आते हैं, तो सिम्टम आती नहीं है, ये तो दिक्कत आती है कि सिम्टम नहीं आते, तो जब आते सब सिम्टम आते तब कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिस ये जो बीमारियाँ हैं हम टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट करें या अल्ट्रासाउंड करें तो हमें मालूम चल जाता है कि लीवर में सूजन चल रही है, सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन ब्लड टेस्ट करेंगे तब वो पता चलेगा कि लीवर के अंदर सूजन चल रही है
1: जी।
2: तो ये बताया कि हर एक व्यक्ति को एट अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज जो लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए और भी ब्लड टेस्ट लाइक ब्लड शुगर करना चाहिए, बीपी की जांच करनी चाहिए, और ये जहाँ भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है उसका इलाज प्रॉपरली हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव जी
3: जी,
1: ये हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो सिम्टम नहीं है तो काफ़ी दिनों के बाद में इसका सिम्टम आता है, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें सिम्टम का मतलब क्या है कि किस प्रकार के लक्षण नजर आएंगे, क्या किस प्रकार का फील होगा, किस प्रकार की परेशानी होगी?
3: हाँ, ये एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है और बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं मेरे से। तो लीवर के सिम्टम को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है जनरल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, एक होता है स्पेसिफिक सिम्टम जो लीवर से डायरेक्टली लिंक्ड है
1: जी।
3: तो बहुत से ऐसे सिम्टम हैं लीवर के बीमारी के शुरू में जो किसी और कारण से भी हो सकते हैं आप, राइट। जैसे सबसे पहले फटीग, कमजोरी आना, हरारत होना, आप थक जा रहे हैं, आप नॉर्मल जो आपकी विगर था वो नहीं आ रहा, आपको हल्की हल्की बॉडी मेचिंग होती है, आपको लगता है हल्का हल्का बुखार हो रहा है, या आपको लग रहा है कि भूख कम लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट आप भूख जो लगी थी नहीं लग रही है, आपकी बॉडी कुछ रैश आने लगे, कोई आपको निशान देखे बॉडी में आपने कुछ, एक तरह के जनरल एक सिम्टम आते हैं। वो क्या होता है कि ये चाहे लीवर की बीमारी

0: हो, चाहे कोई और इन्फेक्शन हो, कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, उसमें भी आ सकते हैं। तो इस स्टेज में ये बोलना मुश्किल है कि ये लिवर से लिंक्ड है,
1: जी
0: लेकिन आपको उस प्रॉब्लम है और आपको उस समय एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन जो लिवर से डायरेक्टली लिंक्ड सिम्टम है, जैसे कोई कहता है मेरी आँख तो पीली हो रही है, यूरिन का रंग पेशाब आ रहा है, जो यूरिन कलर वो एकदम पीला आ रहा है, राइट, या उनके जो स्टूल्स होते हैं नॉर्मली वो क्ले कलर्ड हम कहते हैं उसको, या उसको राइट में पेट में दर्द हो रही है, पेट के दाहिने तरफ ऊपर दर्द हो रही है,
1: जी
0: पैरों में सूजन आ रही है, और जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, किसी को खून की उल्टी आ सकती है, लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, पेट फूलने लगता है, पता चला कि पेट में पानी भर गया है, इस तरह बहुत सारे और सिम्टम है जो लिवर से डायरेक्टली लिवर खराब होने के लक्षण हैं। तो
1: जी
0: वो काफ़ी जैसे भी डॉक्टर गोविंद जी ने बताया कि ये एडवांस स्टेज में आते हैं, तो इसलिए सिम्टम जब आने लग जाते हैं तो नॉर्मली वो लिवर बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है।
1: जी
0: तो हमारा पूरा एफर्ट रहता है एज फिजिशियंस एज क्लिनिशियंस की हम उसको शुरुआत में ही पकड़ लें, अच्छी
1: जी
0: स्क्रीनिंग, अच्छी प्रिवेंशन, ताकि ऐसी नौबत ना आए।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल आ रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हेलो जी, बताएं अपना नाम, बताएं प्लीज़, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही है और कट कट के आ रही है। जी बताएं। हाँ आप बताइए, आपका नाम बताएं।
2: जी यामिन, मैं यामिन बोल रहा हूँ, यामिन भाई रेडियो वाला,
1: जी
2: जोड़ी लोनी जिला का।
1: जी जी यामिन भाई
2: सर से
1: बताएं।
2: जानना चाह रहा हूँ, क्या जो नवजात शिशुओं की और बच्चों के लिए वैक्सीन है बाजार में क्या?
1: कौन सी स्कीम?
0: अच्छा, नवजात शिशु और बच्चों के लिए
2: वैक्सीन।
0: हाँ
2: जी,
1: अच्छा,
2: जी
1: वैक्सीन वैक्सीन की बात कर। जी जी
2: हाँ जी हाँ जी,
1: जी
2: तो
1: डॉक्टर
2: ये
1: साहब,
2: जानना चाह रहा हूँ।
0: ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वैक्सीन बिल्कुल इंडिया के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, UIP कहते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें बच्चे जो पैदा होते हैं इन द इन्फेंसी, उनके एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, हमारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। साथ ही हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, IAP है, उसके भी एक बड़े क्लियर एक वो रूल्स बने हुए हैं। हम लिवर की अगर बात करें तो हर नवजात शिशु को, हम अब लिवर की बात कर रहे हैं, अच्छा, हेपेटाइटिस बारे में,
1: जी
0: हर नवजात एवरी न्यूबॉर्न उसको वैक्सीनेशन होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की एट बर्थ। फिर उसका एक रूल होता है, उसका एक वो 3 डोज मिलती है, 1 मंथ एंड 6 मंथ्स, राइट।
1: जी हाँ।
0: तो हर बच्चे को वैक्सीनेशन करना, ये हेपेटाइटिस बी का हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, UIP के अनुसार ये देना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब
0: एक और वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए का, जो हालांकि इंडियन एकेडमी पेडियाट्रिक्स बताती है कि UIP में नहीं है, पर उसमें हम कहते हैं कि जो 12वें महीने में बच्चों को वैक्सीन मिलता है और उसके 6 महीने बाद एक और वैक्सीन मिलता है जो हेपेटाइटिस ए के लिए,
1: जी
0: ये भी IAP जो हमारी इंडियन एकेडमी पेडियाट्रिक्स है उसकी अकॉर्डिंगली दी जाती है। इस तरह से बिल्कुल बच्चों के लिए वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस के वैक्सीन तो खास तौर से, आपने अच्छा सवाल पूछा और पता होना चाहिए लोगों को कि हेपेटाइटिस बी का और ए का वैक्सीन है बच्चों
1: जी
0: के लिए।
1: डॉक्टर साहब, तो ये कहाँ अवेलेबल है और क्या इजीली अवेलेबल है, किसी हॉस्पिटल्स में, किसी डिस्पेंसरीज में जा करके ये किस प्रकार उसे ले सकते हैं?
0: जी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो आजकल हर डिस्पेंसरी, हर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट, हर जगह अवेलेबल है।
1: जी
0: इसमें कोई गांव गांव में आप जाएंगे वहां पर भी जो जो वहां पर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहां निश्चित रूप से मिल जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जब यहाँ पर इन्फेंट की बात होती है, एक नवजात शिशु की बात होती है, तो गर्भवती महिलाओं की भी बात हो जाए, और उनको कब किस प्रकार से हेपेटाइटिस का इंजेक्शन बी का ए का कब किस प्रकार की कौन सी इंजेक्शन लेनी चाहिए या टीकाकरण होनी चाहिए?
0: देखिए, प्रेगनेंसी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका एक नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो महिलाएं ने अपनी लाइफ में जो जो वैक्सीन लेने चाहिए ले लिए होंगे, राइट, जैसे हम जो वैक्सीन प्रोग्राम जो होता है।
1: जी
0: उसके अलावा अलग से अगर उनके जो एंटीनेटल क्लिनिक में जो उनकी जो गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे हैं वो कुछ बताते हैं आपको ये वैक्सीन अगर लेने हैं तो आपको लेने पड़ेंगे, बेस्ड ऑन दैट जो हमारा फोकस रहता है कि किसी महिला को हेपेटाइटिस बी अगर है फर्स्ट करिए, तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिक हमारा प्रोग्राम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर उस महिला के जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से जो नवजात शिशु में ना वो वायरस आ जाए, उसके लिए होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एक इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है प्लस उसके वैक्सीन की जाती है, तो ये फिर उसके जो डॉक्टर देख रहे होते हैं वो इसके लिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे, तो इससे नवजात शिशु को इन्फेक्शन नहीं होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ और फोन कॉल्स हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते
3: जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आकाशवाणी रेमबो को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो समय समय पर हमें डॉक्टर उपलब्ध कराते हैं और अच्छी जानकारी मिलती है, और इससे हमारे स्वास्थ्य में भी बेहतर कुछ होने की दिशा में मिलती है। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार,
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है।
3: जी
1: जी
3: जी मेरा प्रश्न ये है कि

0: सर मुझे एसिड रिफ्लेक्स की समस्या हो गई है, तो गैस बहुत बनती है, रात को जब मैं सोता हूँ तो मुंह कड़वा हो जाता है और एक पीला पीला पदार्थ पेट से निकलता है, जो मतलब जो खाने वाला जो लिक्विड होता है वो जो बनता है पेट में, वो लिक्विड मुंह में आ जा रहा है, जिस कारण से मुंह कड़वा हो जाता है। तो क्या ये लीवर की समस्या है?
1: जी डॉक्टर गोविंद जी, ये पहली बात तो ये समस्या लीवर की नहीं है फॉर श्योर, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपके जो पेट है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, स्टमक पे एसिड बनता है और वही एसिड फूड पाइप में आता है, फूड पाइप जैसे इसोफेगस। तो जब भी एसिड फूड पाइप में आता है तब जलन सी होती है, और वही एसिड कभी कभी मुँह में भी आता है, उससे मुँह में कड़वाहट होती है और मुँह में पानी आता है एज ए पार्ट ऑफ रिफ्लैक्स। सो ये पूरी बीमारी का नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़। और उसके लिए कुछ परहेज करने चाहिए आपको। पहली बात है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न ज़रूर कम करें। दूसरी बात, खाने के बाद आप लेटे नहीं कम से कम 1.5 घंटे तक। तीसरी बात, आप अपने मील को डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, रादर देन 3 मील्स जो हम लोग खाते हैं जनरली, आप 4 या 5 मील लीजिए, लेकिन अपना डिनर को थोड़ा सा छोटा रखिए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। ये चीज़ तो करनी है, जो हम सभी का सब करना चाहिए। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि पेट में एसिड की मात्रा कम कर देती हैं, और दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। अगर वो दवा लेंगे आप 4-6 हफ्ते के लिए, तो उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि आपके सिम्टम सही हो जाएंगे, लेकिन सिम्टम फिर हो आगे हो सकते हैं, तो फिर आगे दवा आपको दवा लेनी पड़ेगी। और साथ में ये भी बता दूँ, जो सिम्टम आपके हैं वो अपनी कंट्री में हर एक 100 में से 15 लोगों को होती है, मतलब एवरी 6th पर्सन को ये सिम्टम्स हैं, वेरी कॉमन है। और दिस मेनली बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, तो वज़न कम रखें, स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग बंद करें, खाने के बाद लेटे नहीं, डिवाइड योर मील इनटू स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स, एंड कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए आपको इसके अलावा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब और हमारे इस श्रोता मित्र का भी। और एक और फोन कॉल। हेलो
3: जी, नमस्कार। दीदी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
2: जी गौतम साहब बताएं।
3: मेरा कहना है कि हमारा दिल्ली NCR में पूरे वर्ल्ड में फैटी लिवर के नंबर 1 मरीज है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो हमारा हेपेटाइटिस है वो घट रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने जो हमारे चिकित्सक हैं उन्हें, स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि हाँ, मेरा पूछना है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें एक शब्द आता है हिपेटोमिगैली।
4: जी,
3: तो हिपेटोमिगैली क्या है? क्या ये फैटी लीवर ही है या कोई लीवर से संबंध बीमारी है? कृपया विस्तार से बताएं।
2: जी डॉक्टर साहब जी,
4: ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इनफैक्ट ये जो टर्म आपने यूज किया है अक्सर लोग पढ़ते नहीं है, डॉक्टर्स तो पढ़ते ही हैं, पर इसका मतलब कि आप बहुत जागरूक हैं अपने अपने रिपोर्ट के बारे में, और बहुत अच्छी बात है ये। हेपेटोमेगाली, मेगाली मीन्स बड़ा हो जाना, हेपेटो मीन्स लिवर, मतलब लिवर आपका बड़ा हो गया है। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो गिन उसकी मेजरमेंट लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16, वो उसको मेजर करते हैं। उनको लगता है कि ये कट ऑफ के बाहर है, तो बेस्ड ऑन आपकी एज और आप बच्चे हैं और एडल्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं कि आपका बड़ा है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि फैटी लिवर हर समय, फैटी लिवर उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है
2: जी।
4: उसके अलावा बहुत सारे कारण है कि लिवर बड़ा हो सकता है। लिवर के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, लिवर में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ कहते हैं वो एक डिजीज होती है जहाँ पर लिवर के अंदर इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज होती है, टीबी हो सकता है, बहुत सारे। और कई बार ये एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है, तो मात्र हेपेटोमेगाली का टर्म आते उस अगर आता है तो उस पर आप ज़्यादा चिंतित नहीं है। मोस्टली आपके डॉक्टर देख लेंगे इसका एग्जैक्ट कारण क्या है
2: जी,
4: और एक बार कारण पता चल जाएगा तो फिर उसका एग्जैक्टली इलाज कर सकते हैं।
2: यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
4: नहीं, देखिए मरीज को ना परेशान होना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स उसको देख के अलर्ट हो जाते हैं कि इसके लिए क्या करना है हमें आगे। और अक्सर जैसे फैटी लिवर आया तो उसका सही इलाज हो सकता है और उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है।
2: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ मैसेजेस भी हैं, और ये मैसेज आया बहुत दूर से, 7 समंदर पार से कह सकते हैं, और ये हैं जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। डॉक्टर, फॉर फैटी लिवर व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू डू एज प्रिकॉशंस टू स्टॉप द लिवर गेटिंग मोर फैटी, डू यू थिंक ड्रिंकिंग हॉट वाटर लाइक टी इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट कैन हेल्प?
4: जी आपका थैंक यू, आपने इतनी दूर से क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अपने आप में पूरा चैप्टर है इसका आंसर
2: जी,
4: तो हम अगर उसको एक ब्रीफली अगर एड्रेस करें, सबसे पहले कि देखिए हम लोगों में जैसे अगर

0: या तो यू नो एवरी वन इन फोर हैज़ फैटी
1: जी
0: लिवर,
1: जी
0: कलीवर सिटीज़ में 30-40% लोगों में फैटी लिवर की यू नो एक प्रिवलेंस हो गई आजकल। तो उसके लिए जो अगर आप प्रिकॉशंस की बात करते हैं जो आपने पूछा है, तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डाइट जो है उसमें डाइट और एक्सरसाइज, ये दो उसके कॉर्नर स्टोन्स हैं इसको ठीक करने के,
1: डाइट और
0: एक्सरसाइज।
1: एक्सरसाइज,
0: हाँ,
1: जी हाँ।
0: आप अगर इन दोनों पे आप अगर एड्रेस करते हैं तो आप समझिए कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लिया। दवाई बहुत नीचे आती है
1: जी
0: और डाइट पे एक सिंपल सिस्टम है। जब फैटी लिवर होता है तो लोग डॉक्टर कारण ढूंढते हैं
1: जी
0: कि आपको डायबिटीज़ है, क्या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्या आपका वेट ज़्यादा है, क्या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थायराइड में प्रॉब्लम है। तो अगर इस सारी प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर की इनमें से क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी
0: तो एक होती है कि आप जैसे जो जो फैक्टर्स आपके एसोसिएटेड बॉडी में उनका इलाज करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लीजिए उसको कम करिए, एक्सरसाइज करिए। डाइट पे फिर आप क्या करें, अपना लो फैट डाइट लें, अगर जितना हो सकते हैं अननेसरी कार्बोहाइड्रेट ना लें, और जैसे होता है ना शुगरी ड्रिंक, वाइट शुगर कहते हैं, प्योर शुगर, मैदा ये अच्छा नहीं, रिफाइंड शुगर ये अच्छा नहीं है, फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, हेल्दी प्रोटीन लें। आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, फिश चिकन बहुत अच्छा है, रेड मीट को अवॉइड करें, और अपनी टेक्निक ऑफ कुकिंग, ऑयली फ्राइड फूड को आप ना खाएं, उसको थोड़ा डिफरेंट वे में, लो कुकिंग ऑयल जिस तरह से ना कम मात्रा में ले,
1: जी
0: और
1: जी
0: सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करें।
1: अवॉइड करें।
0: या
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल भी है, उनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी
1: हेलो हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्कार। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। हेलो,
2: आवाज
1: हाँ
2: आपकी
1: जी
2: आवाज
1: जी बताएं
2: नहीं आ रही। हेलो,
1: जी बताएं जी बताएं बताएं, आप सवाल क्या है आपके। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो, लगता है कि उनसे हमारा संबंध, हमारा कांटेक्ट टूट गया। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर संजीव जी ने फैटी लीवर की बात की, तो फैटी लीवर का क्या गैस्ट्रो से कुछ संबंध है क्या।
3: एकदम पूरा संबंध है,
1: जी
3: पूरा संबंध है इससे। और फैटी लिवर, लिवर की बात, लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर होल डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो भी खाना खाते हैं वो आंतों में अब्जॉर्ब होने के बाद में जाता है लिवर के अंदर जाता है,
1: जी
3: वहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो लिवर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर
1: जी
3: डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो एक बात देखो, संजीव कह रहे थे अभी फैटी लिवर के बारे में, अगर उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि ये तो बताया उन्होंने कि खाना क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और एक सिंपल सी बात ध्यान रखें कि इज़ ऑल अबाउट

और अब हर सप्ताह यानी शनिवार और रविवार को जिलावार विशेष कैंप लगाने शुरू कर दिए गए हैं। विधानसभा स्तर पर स्थानीय विधायकों के समन्वय से लगाए जाने वाले इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोगों से एप्लीकेशंस यानी आवेदन कराना है और उनकी शंकाओं का समाधान भी करना है। और अभी तक सरकार को करीब 2500 पूर्ण आवेदन प्राप्त भी हो चुके हैं और अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, लेकिन आवेदन प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवाल भी उनके हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सबसे अधिक सवाल जो हर बार पूछा जाता है वो ये है कि नियमितीकरण में कितना शुल्क लगेगा और आगे कितनी राशि खर्च करनी होगी। और आपको बता दूं कि सरकार ने 1511 कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 31 अक्टूबर तय की है, तो बस झूम लीजिए इस बात पर।

झूम तो मैं भी रही हूँ क्योंकि मैं भी जाने वाली हूँ बस, और अगला प्रोग्राम की आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि 6 से 7 जो है वो लेकर आएंगे भगवती। तो बस जल्दी से आप तैयार हो जाइए, अपने अपने जो

हैंडसेट है ना आपके पास फोन, अपनी डिवाइस, उसमें मैसेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपके जवाब आने वाले हों और आपके नाम भी पढ़े जाएंगे जरूर। तो इस बात का ख्याल रखें कि मैसेज जब भी आप भेजें तो अपना नाम जरूर भेजें, और जो भी मैसेज भेजें उसे शॉर्ट करके भेजेंगे तो वो जल्दी से भगवती ले सकते हैं। तो इंतजार कीजिए भगवती का इस प्रोग्राम में जिसका नाम होगा मैसेज मसाला मिक्स।

ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये आवंटित किए। सरकार ने 10 और 20 रूपये के पॉलीमर बैंकनोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ संभाग में परभणी मुदखेड़ डबल लाइन खंड पर विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 163 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सभी लोगों से हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए समय पर जांच टीकाकरण करवाने और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार लेने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

बारिश की पहली बूंद गिरते ही जैसे मिट्टी की खुशबू ना पूरे माहौल को महका देती है, वैसे कुछ यादें भी दिल के किसी कोने से निकलकर मुस्कुरा उठती हैं। कभी छत पर भीगने की जिद, कभी कागज की नाव, कभी दोस्तों के साथ बारिश में मस्ती, तो कभी किसी अपने के साथ बिताए वो अनमोल पल। बरसात ना हर किसी

ऐसे ही बताइए कौन सी बारिश आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है, कौन सा पल आज भी यादों की फुहार बनकर दिल को भिगो देता है। भगवती को लिख भेजिए अपना संदेश। आपकी प्यारी यादों को हम अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में पूरे दिल से शामिल करेंगे, ताकि आपकी जो कहानी है ना, जो आपकी याद है, वो बन जाए हर श्रोता की मुस्कान का हिस्सा। तो देर किस बात की, अपनी यादों की पोटली खोलिए और भेज दीजिए अपनी बरसात से जुड़ी सबसे खूबसूरत याद सिर्फ मैसेज मसाला मिक्स के लिए। 9868107070 है नंबर, 9868107070 इज द नंबर फॉर योर मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। और भगवती को बहुत बेसब्री से इंतजार है आपके मैसेजेस का।

गुड इवनिंग आरजे जी कह रहे हैं ये तो, गुड इवनिंग हितेंद्र दास जी, असम से हैं ये। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है मोहम्मद सरफराज आलम जी का है, कहते हैं सावन आया घिर घिर आए काले बादल, धरती ने ओढ़ी हरियाली की मखमली चादर, रिमझिम बूंदें जब चुपके से तन को छू जाती हैं, सूखी डाली पर भी नई उम्मीदें मुस्कुराती हैं, पुहारों की सरगम में मन झूम झूम जाता है, मिट्टी की सौंधी खुशबू हर दिल को भाती है, बादलों की ओट से झांकती धूप भी मुस्काए, सावन का हर पल प्रेम और अपनापन बरसाए। सौरभ रेचा गाजियाबाद से कहते हैं एज यूजल गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक दोस्त, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। और ये मैसेज कहते हैं जब हम छोटे बच्चे थे उस वक्त हम पशुओं को चराने जाते थे, तब जब तेज बारिश होती थी तो हम छतरी लगाकर पशु के ऊपर बैठ जाते थे, तो अपना क्या लिखना चाह रहे हैं कि वो अपना चारा चरते रहते थे और हम बारिश का जो है लुत्फ उठाते रहते थे। सोनू है ये बिजनौर से, मतलब एक साथ दो दो काम है ना।

से अकोला महाराष्ट्र से विजेंद्र घटोल का कह रहे हैं कि आज हमारे अकोला में बहुत बारिश हुई है, क्या करें जी। सेम टू सेम आज हमारे यहाँ दिल्ली में भी बारिश हुई अच्छी।

फ्रेंड्स, बारिश की एक ऐसी याद तो आपकी जिंदगी में भी जरूर होगी जो आज भी चेहरे पर मुस्कुरा ले आती हो। वो याद हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। 9868107070 9868107070 है नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं भगवती।

चेतन है और कहाँ से है ये उन्होंने नहीं लिखा है। कहते हैं एक दिन बरसात में हम सब कजिन्स छत पर खेल रहे थे, तभी बंदरों की एक टोली आ गई। उनमें से एक बंदर ने मेरे कजिन की निक्कर पकड़ ली। उसके बाद जो हनुमान चालीसा का जाप हमने किया कि बंदर भी नाच लगा। रियली नेहा है जयपुर से, नेहा शर्मा कहती हैं कि मुझे आज भी बचपन की वो बारिश याद है जब मैं और मेरा भाई छत पर भीगते थे और माँ नीचे से आवाज लगाती थी, बस अब अंदर आ जाओ वरना सर्दी हो जाएगी। लेकिन हम चुपके से 5 मिनट और भीग लेते थे। आज भाई दूसरे शहर में है लेकिन हर बारिश में वो दिन याद आ ही जाते हैं। वाह नेहा, मतलब सच कहूं तो ना कि बचपन की बारिश का मजा शायद फिर कभी लौट कर नहीं आता। माँ की डांट में भी कितना प्यार छिपा होता था ना। उम्मीद है अगली बारिश में, अगली बार जब बारिश हो तो आप और आपके भाई फिर से उसी तरह की कुछ यादें ताजा कर पाए। साथ हों आप दोनों। मैं हूं राहुल वर्मा भोपाल से, कहते मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश वही थी जब मैंने पहली बार जो है अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और हम दोनों पूरी तरह भीग गए। आज हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन हर बारिश उस दिन की याद जरूर दिला देती है। राहुल कहते हैं ना, कुछ जो लव स्टोरीज होती हैं उन पर जो बारिश है वो अपनी मुहर लगा देती है, और आपकी जो कहानी है ना वो भी कुछ ऐसी ही लग रही है। आप दोनों हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहे।

कह रहे हैं कि ये रेन वाले मौसम में बचपन में खूब मस्ती की है, जामुन के पेड़ पर चढ़कर जो है ताजे जामुन खाना, उसका जो है अलग ही मजा था बारिश में। कह रहे हैं प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से लिखते हैं, नियर मेजेंटा मेट्रो स्टेशन। जी बिल्कुल जी, मेट्रो से ही पहुंचेंगे आपके यहाँ जी। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी जो है ये लिख रहे हैं, बचपन और बारिश का चोली दामन का साथ होता है, बचपन में कागज की किश्ती चलाना, गलियों में दौड़ लगाना, ये सब मीठी यादें हैं। और नेक्स्ट मैसेज वी हैव कहां से, किन कानिल शर्मा जी का है, सरिता विहार से, कहते हैं बारिश में जब सड़क पर पानी नदी जैसी लगी, और कहते हैं आज तो 2 घंटे की बारिश ने जिंदगी को थाम दिया, बारिश का काम तो बरसना है और क्योंकि पानी की निकासी खराब है इसलिए मतलब इस तरह से जिंदगी का थमना जो है वो आम बात है, तो दोषी जो है बारिश को जो है ठहराना सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। और ये मैसेज गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेडावन से भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि गांव से मेरी शादी हुई और घरवाली पहली बार बारिश में ही मेरे यहाँ आई, हम खेत पर गए, मैंने हल चलाया और उसने बीज की बिजाई की और वो बरसात में कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल, मतलब कि ऐसी बातें जो है ना वो अविस्मरणीय हो जाती हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, बट बारिश की वजह से आज से 13 साल पहले मेरी शादी में परेशानी जरूर हुई थी। आपने कंप्लेन नहीं की इंद्रदेव जी से उसकी? कहते हैं क्योंकि मेरी शादी जुलाई मंथ में हुई थी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट एक चीज अच्छी हुई, जिस दिन शादी थी ना उस दिन बारिश नहीं हुई थी और आज जो हैदराबाद में बहुत जोर से बारिश हो रही है। कहते हैं कि प्रोग्राम जो है, जो गाने बज रहे हैं, उन्होंने जो है मौसम को और भी अच्छा बना दिया है। नेहा है हैदराबाद से, थैंक यू जी प्रोग्राम सुनने के लिए, उसमें इतना स्वीट सा मैसेज भेजने के लिए।

0: अंशी कह रही है कि मेरा मैसेज भी पढ़ लीजिए ना, अभी पढ़ चुके हैं आपका मैसेज, आपने मिस कैसे कर दिया? इसका मतलब आप जो है लगातार सुन नहीं रहे थे हमें। शमशुल कमर राही गंजुंडवारा से है, कहते हैं कि हम बचपन में बरसात के दिनों में जब स्कूल जाते थे, स्कूल जाते वक्त माँ हमें एक छतरी दे दिया करती थी, एक छतरी और हम दो भाई बहन, और एक दिन स्कूल से लौट रहे थे तभी जोरदार बारिश हो गई, हमने अपनी छतरी निकाली पर हम दोनों भाई बहन रास्ते भर लड़ते हुए लौटे और लगभग दोनों ही भीग चुके थे क्योंकि बारिश तेज थी और हम छतरी अपनी अपनी ओर खींचते हुए आए थे। ये कह रहे हाय पहला मैसेज, दूसरा मैसेज ये अभी कौन सा शो चल रहा है, तीसरा मैसेज एफएम रेनबो दिल्ली पर कि जो है सारा शेड्यूल सेंड कीजिए। ओके जी सर, जैसे कह रहे हैं आप, सर मैम जो भी हैं जहां से भी है, मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं आप, मैं हूं भगवती और आज हम जानना चाह रहे हैं बारिश के मौसम से जुड़ी आपकी कोई खूबसूरत याद जिसे आप शेयर कर पाए हमारे साथ। ये कहती हैं कि मैं हूं पूजा मिश्रा लखनऊ से, मेरे लिए बारिश का मतलब है दादी के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े, अदरक वाली चाय और पूरे परिवार का एक साथ बैठकर बातें करना। दादी अब हमारे बीच नहीं है लेकिन पहली बारिश होती है उनकी याद सबसे पहले आती है। पूजा ऐसा है ना, कुछ लोग भले ही हमारे साथ नहीं रहते लेकिन उनकी यादें हर मौसम में हमारे साथ चलती हैं, तो दादी की जो मुस्कान थी और उनके हाथ का जो स्वाद था ना वो हमेशा आपके दिल में यूं ही महकता रहेगा। आदित्य सिंह देहरादून से कहते हैं कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ बिना किसी मंजिल के बाइक पर निकल जाना और बारिश में भीगते हुए चाय की दुकान पर रुक जाना, वही मेरी सबसे यादगार बारिश है। आज सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं लेकिन वो दोस्ती आज भी उतनी ही खास है। आदित्य ऐसा होता है ना, दोस्त बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं लेकिन दोस्तों के साथ बिताए ऐसे पल कभी भी पुराने नहीं होते। उम्मीद है आपकी फ्रेंडशिप जो है वो यूं ही बनी रहेगी और फिलहाल जो है सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स।
1: के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।

यह है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला में, एक साथ है आपका भगवती का। और आज भगवती जानना चाह रही है आपसे कि आपकी किसी बारिश से जुड़ी, किसी बरसात के दिन से जुड़ी कोई खास याद। कभी कभी बारिश किसी खास इंसान की याद भी साथ ले आती है। बताइए, बरसात जो है शुरू होती, आपको सबसे पहले किसकी याद आती है और क्यों आती है? 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 है नंबर, 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 है नंबर। और भगवती को इंतजार

जावेद आलम के, और इन्होंने लिखा जावेद आलम और इनका बेटा मोहम्मद जयान जयपुर से कहते हैं कि मेरी कहानी है बारिश की। जब जब बारिश होती है तब तब मैं आलू के पराठे बनाता हूँ, और आज भी मेरे जयपुर में हुई है बारिश तो आज भी मैं बनाऊंगा। तो आप जो है आ जाना खाने, मैं ही जो है अपने हाथों से बनाता हूँ। मतलब लालच दे रहे हैं आप तो, और मतलब मुंह में पानी आ रहा है सुनकर आपकी बात। आते हैं थोड़ी देर में, शो करते हैं, उसके बाद बस सीधे यहां से स्टूडियो से बिल्कुल सीधे पहुंच रहे हैं हम जयपुर जी। और ये हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। इतने सारे लोग मिलकर पूछ रहे हैं, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए ना, बारिश की कोई खूबसूरत सी याद सुनाइए ना हमें। ये है भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, कहते हैं कि एक फनी इंसिडेंट इन्हें याद आ रहा है। आज की जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा मैसेज इनका इंग्लिश में है, उसे ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं, तो सुनिए। कहते हैं कि एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहा था तो बहुत गर्मी थी उस दिन, और हमने जो है कहते हैं कि मैंने जो है गाना शुरू किया, मशहूर गाना काले मेघा पानी तो बरसाओ, एंड सडनली इट स्टार्टेड टू रेन। और कहते हैं कि इससे मेरे दोस्त बहुत खुश हुए, क्योंकि एक अपनी तरह का जो है फनी सा कोइंसिडेंस था ये। और हर बारिश में जो है मुझे ये बात ज़रूर याद आ जाती है, मतलब कि याद आने लायक बात है भी ये। कौन है, कहाँ से है? अगेन नाम जो है, अच्छा, विजेंद्र घाटोल अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहते हैं कि बारिश के गाने इन्हें पसंद आ रहे हैं, बारिश के साथ ही गाने सुनना इन्हें अच्छा लग रहा है। अंजी शर्मा कहती हैं हसनापुर से कि पता नहीं नेटवर्क चला गया था तो रेडियो ऑफ हो गया था, इसलिए मैसेज मिस हो गया, सुन नहीं पाई मुझे इनका मैसेज पढ़ते हुए। यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूं आपकी अपनी भगवती। प्रोग्राम भी है आपका अपना ही मैसेज मसाला मिक्स। नंबर है 9848107070, 9868107070।

देहरादून से आलोक पंवार और मिनी कहते हैं कि मुझे पहली बारिश में जमकर भीगना आज भी अच्छा लगता है। कार्यक्रम और जो गाने हैं ये इन्हें पसंद आ रहे हैं, जानकर अच्छा लग रहा है हमें। कहते हैं गविता बोल रही हूँ हरियाणा से, कहती हैं बारिश को देखकर सबसे पहले पकौड़े याद आते हैं। जब जब बारिश होती है तो हम जरूर पकौड़े बनाते हैं। कहते हैं आज की ये बात है, मैं आज कॉलेज के लिए तैयार हुई, 9 बजे निकलने वाली थी, बिल्कुल तैयार थी लंच बॉक्स लेके, तभी बहुत तेज बारिश आ गई और आधे घंटे तक बहुत तेज आती ही रही। फिर मैंने कॉलेज जाना कैंसिल कर दिया और टिफिन जो है घर पर ही बैठकर खाया। कौन है, कहाँ से है, ये नहीं इन्होंने बताया हमें। और ये मैसेज नेक्स्ट जो है, गॉडविन कैस्टलनो फ्रॉम मैंगलोर कहते हैं कि बारिश के टाइम पर जो है मुझे याद है बचपन में जो है स्कूल के दिन याद आते हैं, और रेनकोट अम्ब्रेला वगैरह लेकर हम जाते थे और हम जो है काफ़ी जो है मीलों चलकर जो है इकट्ठे जाते थे और रास्ते में हम पानी में खूब खेलते थे और साथ में जो है पास में एक कोई झरना था वहाँ से जो है हम मछली भी पकड़ते थे हॉर्लिक्स की बॉटल में। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से विक्रांत मैसी लिखा है साथ में और कहते हैं

बारिश में भीगते हुए फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता था। प्रवीण चौहान बारिश के पानी को छत पर इकट्ठा करके खूब कूदते थे, खूब मस्ती करते थे, लकड़ी की नाव बनाकर मकौड़ों को उसमें बैठकर छोड़ देते थे। दैट्स सो क्रूअल। कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, जब हमारे मकान कच्चे थे तो एक बार लगातार 8-10 दिन तक बारिश होती रही थी हमारी यहां तो, और साथ में हमारी बुआ जी का भी मकान था, तो दोनों की जो लास्ट कमरे वाली रूफ्स थी वो गिर गई तो हम किसी स्कूल में शिफ्ट हुए थे। वो सीन कहते हैं कि आज भी याद है। ये है मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास किनका है, कहां से, गाना सुन लेते हैं उसके पहले, क्या कहते हैं।

जवाहर कैम कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से सलमा बेगम और मोहम्मद इम्तियाज कहते हैं, मैसेज कहाँ चला गया जी? ऐसा ही होता है जब आप एक मैसेज टाइप करते हैं ना, उसके बाद बार बार रिमाइंडर के तौर पर मैसेज टाइप करते रहते तो चला जाता है मैसेज कहीं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब इनकी शादी से पहले जो है, कहते हैं कि शादी कोलकाता में हुई और मैं जब शादी से पहले जाता था तो वापस आने के समय लगभग बारिश होती थी। जब शादी हुई और शाम को विदाई के समय वापस आना था ट्रेन से कोलकाता से बिहार को, तो काफी बारिश हुई और हर जगह पानी था और कि रोड जाना, यहाँ तक कि स्टेशन तक जो है जाना मुश्किल हो गया था, कहना चाह रहे हैं। और कहते हैं लोगों ने कहा कि लड़की की विदाई में आसमान भी खुशी में रो रहा है। कहते हैं मेरी बारिश का इंसिडेंट यह है कि साल 2005 के मार्च का महीना था और दोपहर 3 बजे मैं खेत में गया था और अचानक बारिश हो आई और बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं थी और बहुत तेज बारिश होती रही, घंटों तक घर आने तक बारिश हो रही थी। ये है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से।

दोस्तों कहते हैं ना कि बारिश सिर्फ धरती को ही नहीं दिलों को भी भिगो जाती है। आज आपके संदेशों ने यही एहसास फिर से ताजा कर दिया। किसी ने बचपन की शरारतें याद की, किसी ने दोस्तों का साथ, किसी ने अपने प्यार की कहानी सुनाई, तो किसी ने ना अपनों की मीठी यादों को हमारे साथ साझा किया। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत पल हम पर भरोसा करके हमारे साथ बांटे। यकीन मानिए आपकी यादें सिर्फ आपकी नहीं रही, अब ये हम सभी की मुस्कान बन गई हैं। और अगर आज आपका मैसेज जो है शो में शामिल नहीं हो पाया है तो प्लीज डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हमारे पास भी जो है टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। कोशिश की है मैंने ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस लेने की, और अभी तो समय हो रहा है कि मैं आपसे लूं अनुमति, और जल्द ही फिर मुलाकात होगी। घंटे भर के बाद आपसे फिर मिलूंगी मैं म्यूजिक पस्ती लेकर। तब तक जब भी बारिश की कोई बूंद आपके हाथों पर गिरे ना, तो एक पल ठहरिएगा, शायद कोई खूबसूरत याद फिर से मुस्कुरा उठे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक टू यू आस्क फॉर इट ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 megahertz. And dear listeners, you have already started to show us a lot of love in our WhatsApp inbox, and requests are just now flooding in. So first request has been made by Mr. Ravi Prasad from Hyderabad. They're suggesting, hi RJ Shubhankar, lovely name you have, thank you so much. Please play Stereo Love by Edward Maya. So indeed, we are going to play Stereo Love by Edward Maya.

0: So that was Until I Found You by Stephen Sanchez. Dear listeners, it's time for a quick break, but we'll be back and the festivities of great music will continue on the other side. You're listening to You Asked For It.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है. आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
4: ठीक है.
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम पे उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.
0: वेलकम बैक टू यू आस्क्ड फॉर इट ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़. बिफोर वी कंटिन्यू द प्रोग्राम, डियर लिसनर्स, as always, it's a reminder that wherever you are, at work, on your way home, or enjoying our program right now, from the comfort of your couch, please hydrate yourself. Take a cup of that cold water, gently sip and sit down and relax. The weather is awesome today. So up next, we have a request from Aniket from Amritsar, who is requesting Blinding Lights by The Weeknd. Aniket, here goes to you.

0: So that was The Winner Takes It All by ABBA, dedicated to Mr. Michael Fernandez from Goa. Dear listeners, it's time for another short break, but we'll be back. And on the other side, we're going to rock out with these next suggestions and requests which we have received. You're listening to You Ask For It.
1: एक जमाने से कहानी है सुना है आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

0: that was The Loneliest Time by Carly Rae Jepsen featuring Rufus. And this song was dedicated to Praveen Chauhan from Kargaon, Madhya Pradesh. Praveen, we hope you had a great time listening to this particular track. And that was the last request of this show of You Asked For It. Dear listeners, we'll be back after a quick break for our final track.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
0: And dear listeners, with that, we have reached the end of our program, You Asked For It. Please don't forget to join us at 10 p.m. for our show, Music Mix. Until then, here's Shubhankar signing off with the final song of the program, One More Time.

नमस्कार, लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में चर्चा जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 10 और 20 रूपये के पॉलीमर बैंक नोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ संभाग में परभणी मुदखेड़ डबल लाइन खंड पर विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 163 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ये थे इस घंटे के अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूजिक मस्ती में। मैं हूं भगवती।

बिल्कुल यही है, और मुखातिब है आपसे आकाशवाणी के स्टूडियो 25 से। यू आर आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती और मैं हूँ भगवती। Check out this track from the movie Mehuna.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाए।

थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यह आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती और साथ है आपका और भगवती का और अब ये साथ रह गया है पूरे 10 मिनट्स का और जो है और देखते हैं इतनी देर में क्या क्या प्ले कर पाते हैं हम आपके लिए। मेरी प्लेलिस्ट में है बढ़िया से 3 गाने और।

अब समय है म्यूजिक मस्ती के साथ भगवती ले आपसे अनुमति। और उसके पहले जो है बता देती हूँ आपको कि अब से कुछ समय बाद से 9 बजे से जरीनाज आपके साथ होंगी, लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रही। और जरीन आ चुकी हैं स्टूडियो में प्रोग्राम की सारे जो है पूरी प्लेलिस्ट के साथ। 10 बजे से आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम जिसमें शुभांक रहेंगे आपके साथ। और 11 बजे से सुनिएगा रंगे महफिल, जरीनाज एक बार फिर आपके साथ होंगी। और अगर गजलें सुनना अच्छा लगता है आपको तो जरूर जरूर सुनिएगा ये शो। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। शब खैर, गुड नाइट।

नमस्कार। इस वक्त की खास खबरें। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में विद्यार्थियों के खिलाफ मामले वापस लिए। लोक परीक्षा, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में चर्चा जारी है। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू की। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ संभाग में परभणी मुदखेड़ डबल लाइन खंड पर विद्युतकर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 163 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी

किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और खेलों में चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। तो ये थी इस वक्त की खास खबरें और अब सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर हाजिर हूँ मैं जरीन। कहते हैं तिश्न की रोज मुलाकात में रह जाती है, मेरी हर एक बात कहीं बात में रह जाती है, तो बातें तो पूरे एक घंटे हम कर सकते हैं। फिलहाल पहला गाना आपके लिए ये रहा।

अगर तू ख्वाब है तो कभी टूटे ना, तू एहसास ही सही कभी छूटे ना। कुछ मासूम से जज्बे, कुछ अनदेखे सपने, बहुत कुछ है जिंदगी में जीने के लिए। इस दुनिया में ना बहुत खास हुआ और वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिसके आसपास हुआ। हमारा बस चले तो वो पल जिंदगी में आपके आने ही ना दे हम, जिससे किसी भी तरह की उदासी आपको। और एक्चुअली अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपकी आंखों में आंसू तो कभी नहीं आने देंगे, गानों के जरिए ही आपको एक प्यारी सी झप्पी दे सकते हैं हम, जादू वाली। फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज में ये अगला ट्रैक आपके लिए मिकी वायरस फिल्म से।

तुम्हारा ये नाम कुछ ऐसे मेरे होठों पे खिलता है, अंधेरी रात में जैसे अचानक चांद बादल के किसी कोने से झांकता हो और सारे मंजरों में जैसे रोशनी से फैल जाती है, जैसे लरचती फूलों की डाली ओस के कतरे पहन के मुस्कुराती हो। और पता है, तुम्हारे नाम का तारा मेरी रातों में ऐसे खिलता है, तुम्हें जब भी देखती हूँ हर सफर की शाम से पहले, किसी उलझी हुई गुमनाम सी सोच की कैद में, किसी रूखे बेनाम लम्हे की खुशबू में, किसी मौसम के दामन में, किसी ख्वाहिश के पहलू में, खुश रंग मंजर में तुम्हारी याद का रास्ता न जाने किस तरफ मुझे ले जाता है। रेखा भारद्वाज की आवाज में अगला ट्रैक बर्फी फिल्म से आपके लिए।

कोई अक्सर आ जाता है आपके गुमनाम ख्यालों में और आप उलझते जाते हैं उसकी यादों के जालों में। 100 बार कोशिश कर ली पर आप बाहर नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा ये जी का जंजाल। वो कहते हैं वो अकेले हैं उन यादों का क्या जो हमेशा आपके साथ चलता है। ये यादें अक्सर हंसाती है हमें, रुलाती है, आंखें भिगाती हैं, मगर कम से कम बेवफा नहीं होती क्योंकि उम्र भर साथ निभाती हैं। भले इंसान आपसे दूर हो जाए, ये यादें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती साहब, कभी नहीं छोड़ती।

कुछ आवाजें मन में गूंज रही हैं, कुछ एहसास हैं कि पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं। दिल है कि डूबता जा रहा है, बार बार बजे हुए गाने को दोबारा सुनने का मन कर रहा है। होता ना अक्सर आपके साथ भी ऐसा, जब जिंदगी में कुछ याद ऐसी होती हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड बेस OTT ऐप नाउ।

0: से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर।

0: WR 102.6 आपके लिए।
1: कहते हैं कि अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे रिश्ते संभाल कर रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त तो ला सकता है, पर अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं ला सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये ज़िंदगी कतरा कतरा जी रहे हैं, उसमें ऐसे लोग आपके सराउंडिंग्स में हो जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, आपको पॉजिटिविटी का एहसास दिलाएं। और देखिए, जब आपके मैसेजेस आते हैं ना, तो हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आदाब आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लगातार। अकोला से हमारे पास मैसेज आया है और इन्हें प्रोग्राम मजा आ रहा है। प्रमोद चिंचोलकर अकोला से मैसेज कर रहे हैं। डॉली जी का भी मैसेज आया हमारे पास, वो भी कह रही है टचिंग सॉन्ग है और प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। मैसेज आया है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कह रहे हैं बहुत बढ़िया कार्यक्रम, गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं और ये जो गानों का चयन है वो इन्हें खूबसूरत लग रहा है। गाने तो अपने आप में ना सारे ही औसम होते हैं, और खासकर 90s की अगर हम बात करें तो ये समझ ही नहीं आता कि कौन सा गाना छोड़ें कौन सा प्ले करें, क्योंकि एक पूरा जखीरा है गानों का। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा कस्बा गुन्नौर यूपी से हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास असम से भी मैसेज आया है हितेंद्र दास का। कई लोग रेडियो के जरिए प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कई लोग मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सनी काम्बोज का पटियाला से मैसेज आया हमारे पास और आदाब कर रही हैं हमें और कह रही हैं कि प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। प्रदीप सलूजा जी का जनकपुरी दिल्ली से ये मैसेज है। नोएडा से संदीप का मैसेज आया है। बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, फिलहाल एक ट्रैक हम प्ले कर देते हैं। 90s हिट है ये भी और सातवां आसमान फिल्म का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना है। लता जी की आवाज एक बार फिर से ताजी हो जाएगी इस गाने के जरिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: आप सुन रहे प्रोग्राम आपकी याद आती रही, जरीन मैं आपके साथ, आपकी दोस्त। कभी कहीं पढ़ा था मैंने कि बारिश में इंद्रधनुष के रंग ही बरसते हैं, वरना यूं तो सारी धरती बेरंग ही नजर आती है। सची तो है, जिंदगी का फलसफा भी तो कुछ ऐसा ही होता है जनाब। आखिर बदलाव ही तो दूसरा नाम है जिंदगी का, जो कभी एक सी नहीं रहती, हर पल बदलती रहती है। कभी बहा करती है हवा सी, कभी बहा करती है नदी सी। जिंदगी कटने के साथ ही न जाने कितनी चीजें बदलती जाती है हम इंसानों की। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि न जाने आगे क्या क्या बदलना बाकी है, न जाने कितनी और बची है जिंदगी और उसमें क्या अनोखे सरप्राइजेस हमारे लिए है, कितनी शह और मात बाकी है, न जाने कितनी बारिशों में अब भी कुछ जज्बात धुलने बाकी हैं। गुजरते वक्त के साथ ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सिल्वर स्क्रीन पर हर सीन बदल गया। हर रंग में ये दुनिया 100 रंग दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। और हाँ, मुझे सावन का ये गाना ना ऑल टाइम फेवरेट लगता है, हरिहरन जी की आवाज में, दहक का। हमेशा जब बारिश का मौसम आता है ना, इस गाने को ऑटो प्ले में लगा देती हूँ मैं, कंटिन्यूटी में बहुत दफा सुनती हूँ। आप भी सुनिए ना। और सोनाली बेंद्रे तो क्या फिल्माया गया इस सॉन्ग को, awesome।

जी हाँ, इतने सारे खूबसूरत गाने के साथ, इस वादे के साथ जा रही हूँ कि एक घंटे बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी कुछ खूबसूरत दिलकश गजलों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर।

0: So that was Luther by Kendrick Lamar and SZA. This track is called Luther as it is inspired by the R&B legend Luther Vandross and prominently samples his song If This World Were Mine, which you hear the refrain in the entirety of the track. Well, dear listeners, it's time for a short break. We'll be back quickly. You're listening to Music Mix.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: वेलकम बैक टू म्यूजिक मिक्स। डियर लिसनर्स, इफ यू आर एंजॉयिंग द शो सो फार, प्लीज फील फ्री टू शो अस सम लव बाय सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9868107070. I repeat, 9868107070. Before the break, we dabbled in the raw emotions of emo rock and the storytelling of hip hop. Now let's head to the sun-soaked grooves of modern reggae and reggae fusions, where every rhythm feels like a gentle breeze and every melody just brings smile to our faces. But before we delve into modern and reggae fusions, let's pay our respect to the originator. Here is Bob Marley with Is This Love?

0: Well, that was Smile by Lily Allen. Well, dear listeners, it's time to take another short break. The great music still demands your attention on the other side. You're listening to Music Mix.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.
0: Welcome back to Music Mix, only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Dear listeners, now we are switching the genres once again and going towards punk rock route, a genre built on raw energy, unfiltered attitude, and the belief that less is more. Imagine buzzing guitars, infectious vocals, and drum playing at the speed of light. Punk is pure adrenaline captured in sounds. So who better to kick things off than the original bad boys of punk rock? Here is the Ramones with Sheena is a Punk Rocker.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वेलकम बैक टू म्यूजिक मिक्स। डियर लिसनर्स, we are near the end of our musical journey through Music Mix. We had a great time playing these songs for you, and we wish you had a great time as well. Well, for our last musical stop, we are going to the jazz route. But not traditional jazz route, we are going to play some of the most creative jazz fusions. First, by His Excellency himself, Miles Davis with Chocolate Chip.

नमस्कार, पेश है इस घंटे की खास खबरें। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने पीओके में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। युगांडा अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इबोला मुक्त घोषित। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। तो ये थी इस घंटे की खास खबरें और अब रंगे महफिल पेश है जनी के संग।

0: आकाशवाणी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल आपका रंगे महफिल में। शायर ने क्या खूब कहा है कि ये शहर ये गलियां जब जब मेरे सामने आए किसी नए इश्क की तरह तुम बड़ी शिद्दत से याद आए।

आप सुन रहे हैं रंगी महफिल। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ है 11:08। बहुत सारी बातें हैं जिंदगी की जो रात की सुकूनियत में हम अक्सर सोचते हैं, और दिल से निकली आवाज बेशक कह नहीं पाते किसी को, लेकिन हाँ, किसी ऐसे हमदम की चाहत अक्सर होती है जिससे दिल की बात दिल तक पहुंचाई जा सके।

श्रेया घोषाल की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे। शायर ने कहा, नैना बोले तो दिल की कहानी समझ में आ जाए, प्यार हो, इंतजार हो या फिर शिकायत, सब कुछ इन आंखों में ही तो छुपा होता है। हमारी आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को दिखाने का मौका देती हैं, रंग रोशनी, खूबसूरत दिलकश चेहरे, सब कुछ हम इन आंखों के जरिए ही तो महसूस कर पाते हैं। आपको पता है, हमारी आंखें 1 करोड़ रंगों की पहचान कर सकती है, और इस खूबसूरत सी 2 आंखों वाली इस जोड़ी में अगर किसी का चेहरा समा जाए तो फिर दिल क्या कहता है। दिल से यही आवाज आती है कि ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा चेहरा नहीं देखा।

हम तो मस्त फकीर अपनी ही धुन में झूमे रे, ना रहे हम दुनियादारी में, खुद की दुनिया में घूमे रे। कई दफा ये होता है ना कि अकेलापन भी अच्छा लगने लगता है। किसी का साथ बहुत जरूरी है इस दुनिया में, लेकिन कई दफा आप थक जाते हैं किसी हम सफर की तलाश में। कई दफा दिल टूटता है और हम बार बार ऊपर वाले से ये पूछते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। फिर जवाब आता है, वक्त पर तुम्हें सब बातें पता चल जाएंगी, ये जिंदगी ना तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप तन्हाई में होते हैं, खामोश रात में, वही तन्हाई आपको सुकून देने लगती है और आपको लगता है कि आप अपनी दुनिया के खुद ही मालिक हैं, किसी को जवाबदेही देने की जरूरत नहीं, किसी की जिम्मेदारी भी नहीं, आप खुद से खुद वाकिफ हैं और पूरी दुनिया आपकी खुद की है।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी

0: यानी करता है सलाम, इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: कभी कभी दिल कुछ ज्यादा ही खामोश हो जाता है, लेकिन इस खामोशी में भी अक्सर एक सवाल उठता है। बारहा दिल में एक सवाल आया, क्यों हम कुछ बातें कह नहीं पाते किसी से, क्यों कुछ एहसास दिल में ही रह जाते हैं? और फिर अचानक ये ख्याल आता है तो खुद से ही इंसान सवाल करता है कि दिल में जो राज छुपा रखा है, हिम्मत होती तो कह देते, शायद कुछ बदल जाता या फिर सब वैसा ही रहता। लेकिन जनाब, कुछ सवालों के ना जवाब होते ही नहीं है, बस वो हमारी धड़कनों के साथ जीते रहते हैं। अगर आपके दिल में भी ऐसा कोई सवाल है तो जरा महसूस कीजिए उसे, शायद जवाब न मिले लेकिन कुछ सुकून जरूर मिल जाए, कुछ कुछ इस गजल की तरह।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है।

0: नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आप सुन रहे रंगी महफिल जरीन के संग, आपके साथ हर एहसास को छूने वाली ये महफिल जो मोहब्बत के नाम सजी है, जहां हर लफ्ज में इश्क की खुशबू है और हर धड़कन में किसी का इंतजार। वैसे मोहब्बत वो शायरी है जो अल्फाज में नहीं एहसास में बयां होती है। तेरी आंखों की नमी में मेरा अक्स दिखाई देता है, हर ख्वाब में तू ही तू हर पल समाई रहती है। कहते ना कि इश्क अगर सच्चा हो तो हर खामोशी भी एक गजल बन जाती है। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी ये इंतजार भी बहुत खूबसूरत होती है। इंतजार कभी किसी अपने के आने का, कभी एक फोन कॉल का, कभी एक टेक्स्ट मैसेज का, और कभी सिर्फ एक जवाब का। अजीब होता है ना, जब घड़ी की सुइयां भी जैसे धीमी चलने लगती है, हर छोटी सी आवाज पर लगता है कि शायद वो आ गया, वो जो दूर रहकर भी दिल के बेहद करीब होता है।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जर्रे के संग। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत में कोई खत मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, लिफाफे में फकत तितली का पर अच्छा नहीं लगता। तुम अपने दिल के कैमरे में मुझे कैद क्यों करते हो, मुसाफिर हूँ, मुसाफिर को तो घर अच्छा नहीं लगता। बहरहाल जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे इसी खूबसूरती के साथ जिया जाए। अगली गजल हरिहरन की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूँ।

वो चेहरा ही क्या जो दिल में उतर न जाए, और वो नजर ही क्या जो असर न कर जाए। तेरा चेहरा गुलाब सा खिला रहता है, दिल मेरा बस तुझ में ही बसा होता है। ऐसा कहते हैं अक्सर महबूब जो इश्क की खुमारी में डूबे होते हैं। वैसे हम ये मानते हैं कि चेहरा सिर्फ एक पहचान नहीं होता, ये तो हमारे जज्बात का आईना है। कभी ये मुस्कान बनकर दिल जीत लेता है, तो कभी खामोशी में हजारों बातें कह देता है। कुछ चेहरे ना ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही अपने से लगते हैं। चेहरे पे हंसी रख के दिल में दर्द छुपाया हमने, किसी से अपना हाल दिल बताया हमने। चेहरे इस किताब को पढ़ तो हर कोई लेता है, पर समझ अक्सर बहुत कम लोग पाते हैं। मगर जब कोई एक चेहरा दिल के तसव्वुर में बस जाए, तो फिर कोई और चेहरा नजर ही नहीं आता। और इत्तेफाक से कोई और चेहरा नजर आ भी जाए, तो बस उस चेहरे में उसका ही चेहरा नजर आता है जो आपके दिल में बसा है ना। गजल अगली जगजीत सिंह की आवाज में।

गजल हमने ढेर सारी सुनी, दिल की बातें भी खूब सारी की। फिर मिलेंगे एक नई महफिल, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शब खैर, जरी की ओर से।

आधी रात के 12 बज चुके हैं। अब आप सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हुई। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी सूची की समीक्षा की। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने पीओजेके में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। युगांडा अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इबोला मुक्त घोषित। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। और ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। ये थे एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 12:03 हो चुके हैं और अब आप सुनेंगे जीरो आर शो में नॉन स्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक, जिसमें आप गानों की दुनिया में खो जाएंगे और एक के बाद एक गानों का आप ऐसे ही मजा लेंगे। तो बस नॉन स्टॉप गानों की दुनिया में आप चलिए और गानों को सुनिए। अभी अक्टूबर मूवी से अरमान मलिक की आवाज में इस गाने से शुरुआत करते हैं और इसके बाद गानों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी रहेगा।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। गुस्ताख इश्क मूवी से आपने गाना सुना पेपॉन और शिल्पा राव की आवाज में। आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, जिसमें नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक आप मजा ले रहे हैं। अब सुनिए 21 मूवी से गाना फ्रॉम अरिजीत सिंह की आवाज में।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अभी आपने सुना राजशेखर और विशाल मिश्रा की आवाज में तबाही मूवी से ये गाना। रात के 12:54 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो और इस शो का आखिरी गाना आप सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी हॉन्टेड 3D इकोस ऑफ द पास्ट।

मध्य रात्रि के एक बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल और अब सुनिए मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हुई। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने पीओजेके में तथा कथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। युगांडा अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इबोला मुक्त घोषित। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। और ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले दो दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 1:02 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और इस टाइम आप सुनते हैं नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। और अब शुरू होता है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने। तो शुरुआत करते हैं 90s के ही कुछ गानों के साथ, यानी अब आप सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी कभी हाँ कभी ना फिल्म से ये गाना, और उसके बाद फिर गानों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और आप नॉन स्टॉप गानों का मजा लेंगे। तो बस ऐसे ही गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। रात के 1:45 हुए हैं। सुहानी रात है शो का नाम, जिसमें आप कुछ 90s के गाने सुन रहे हैं और कुछ नए गाने सुन रहे हैं। अभी आपने करण अर्जुन मूवी का ये गाना सुना था, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। और

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 1:54 और सुहानी रात शो का समय बस से थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। यानी नॉनस्टॉप गाने तो चलते रहेंगे लेकिन इस घंटे के ये आखिरी गाना।

समय हुआ है रात्रि के 2 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब सुनिए मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर कल देर रात तक चर्चा के बाद आज एक बार फिर से लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने पीओजे के में तथा कथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने के एक छलावा बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। युगांडा अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इबोला मुक्त घोषित। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा ने सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। और ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन भारत के रौनक चौहान ने पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। रात्रि के 2:02 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अब बॉलीवुड के नॉन स्टॉप गाने तो सुन ही रहे हैं आप, और अब आपको सुनवाते हैं वो कार्यक्रम जिसमें आप वो गानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसमें आप खो जाएंगे अपने पुराने समय में, यानी भुलाए ना बने हैं शो का नाम, और आपको वो गाने सुनवाएंगे जिसमें किसी टाइम पर वो गाने आपके बहुत पसंदीदा होते थे, आज भी वो पसंदीदा हैं, लेकिन समय के साथ बस आप उन गानों को भूल गए हैं। उन गानों को याद करने का दोबारा ये टाइम है, तो आप उस पुराने टाइम को याद कीजिए और उन गानों की दुनिया में खो जाइए। अभी के लिए काई पोछे मूवी से अमित त्रिवेदी की आवाज में एक गाना, और गानों की लड़ी यहां से शुरू होती है नॉन स्टॉप।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

अभी आपने सुना रेडियो फिल्म से हिमेश रेशमिया की आवाज में ये वाला गाना। आधी रात के 2:30 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है भुलाए ना बने, जिसमें आप वो गाने सुन रहे हैं जो किसी टाइम पे आप सुनते थे, आपके फेवरेट थे, लेकिन उन गानों को टाइम के साथ आप भूल गए। और ये वो टाइम है जहां उन्हीं गानों को आप दोबारा से याद करें और उन गानों का मजा लें। अभी आप सुनिए जावेद अली की आवाज में गुजारिश मूवी से ये गाना, ऐसे ही नॉन स्टॉप गानों का मजा लेते रहिए।

0: की तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जावेद अवली की आवाज में अभी आप सुन रहे थे तुम मिले मूवी से ये वाला गाना, और शो का नाम है भुलाई ना बने, जिसमें नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का आप मजा ले रहे थे, जिसमें वो गाने आप सुन रहे थे जो कि किसी टाइम पर आपके फेवरेट थे लेकिन उन गानों को भूल चुके थे। और अभी ये शो जो है अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और इस शो का ये आखिरी गाना सोनू कक्कड़ की आवाज में जिस्म टू मूवी से है।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर कल देर रात तक चर्चा के बाद आज फिर से लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। वित्त, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों तथा विभाग की भावी कार्यनीति की समीक्षा की। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। पाकिस्तान

के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलाबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने POJK में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी जब्त संपत्तियों को इस्तेमाल करने वाले देशों और कंपनियों के जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने नहीं दिया जाएगा। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया गंगास और प्रीति पवार के साथ मुक्केबाजी में तीसरा पदक पक्का। कॉमनवेल्थ में महिला 69 किलोग्राम भोरतोलन स्पर्धा में हरजीत कौर ने जीता रजत पदक। भोरतोलन में भारत के पदकों की संख्या 7 हुई। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रा में जगह बनाई। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर कल देर रात तक चर्चा के बाद आज एक बार फिर से लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। वित्त, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों की भावी कार्य रणनीति की समीक्षा की। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलाबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने POJK में तथाकथित विधानसभा चुनाव को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करने वाले देशों और कंपनियों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने नहीं दिया जाएगा। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया घांगस और प्रीति पवार के साथ मुक्केबाजी में तीसरा पदक पक्का। कॉमनवेल्थ के महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में हरजीत कौर ने जीता रजत पदक। भारोत्तोलन में भारत के पदकों की संख्या 7 हुई। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रा में जगह बनाई। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

ये आकाशवाणी रेनबो दिल्ली है, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। सारेगामा कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: It's Valentine's Day. And groove.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़

20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हुई। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। नई दिल्ली के चिड़ियाघर में आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलाबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने POJK में तथाकथित विधानसभा चुनाव को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति योमीर जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।